हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, लेकिन सच तो यह है कि संकट के समय कोई साथ नहीं देता, तब किसी न किसी रूप में भगवान ही साथ देता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: जो इच्छा मन में करे सकल सिद्ध हो जाए।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है।

सचे पातशाह गुरु नानक घर की बाणी है, नानक मन समझाइए, अपने मन नु समझाओ, गुरु के शब्द सलाह, और गुरु के शब्द पढ़िया करो, गुरु की शब्द गल करिया करो, गुरु का नाम जपया करो, बस नानक मन समझाइए, अपने मन नु समझाइए, की समझाइए, गुरु का शब्द सलाह।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: का उधार श्याम, तुझे चुकाने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे देखता हूं और किश्तें अदा हो जाती हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
2: राम राम दोस्त राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं नाचीज हरदिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने से खास प्रोग्राम के माध्यम से जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें। जनाब अगर आप कुछ कहना चाहते हैं अपने दिल की बातें मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो दिल में दबाकर मत रखिएगा, फटाफट एक छोटा सा कॉल कर मुझे बता सकते हैं अपने हालचाल, शहर के हालचाल, पड़ोसियों के हालचाल। नंबर है वही जाना पहचाना सुना सुनाया जो अक्सर बारंबार हम आपको बताते रहते हैं। चलिए एक बार पुनः बता 0120406025 अर्थात हिंदी में 120-40-60-205 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 90.8fm@sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं और मेल के माध्यम से मेल जोल बढ़ा सकते हैं। ये तो रही संपर्क सूत्र की बात, यानी कि इसके जरिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्या है खास इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इशारा कर देता हूँ। जाहिर सी बात है कि कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, अगर आपके पास कुछ हुनर है उस हुनर को आप आगे लेकर जाना चाहते हैं और अच्छे दोस्त हैं अच्छे टीचर हैं तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा बेहतर होगा। ऐसी खास एक टैलेंट मेरे साथ जुड़ने जा रहा है जो कि शारदा यूनिवर्सिटी का है, उसके बारे में बातें करेंगे जरूर मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। भाई ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको इशारा किया था कि आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कौन है, कहाँ से है, चलिए ज्यादा आपको इंतजार नहीं कराना चाहूंगा, लेकिन बारम्बार मैं आपसे यही बातें शेयर कर रहा होता हूँ, साझा कर रहा होता हूँ कि अगर आपके पास कोई हुनर है, कुछ आप हमसे कहना चाहते हैं, आपके पास एक अच्छी कला है, आपके पास एक अच्छा टैलेंट है, वो चाहे आप सिंगिंग की बात हो, चाहे वो राइटिंग की बात क्यों ना हो, तो ऐसी हमारे रेडियो को सुनकर, हमारी ख्याति को सुनकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं शारदा यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं जिनका नाम है सुमित कुमार। ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और जीएनएम का कोर्स कर रहे हैं शारदा यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी, अच्छा गाते, अच्छे इंसान है। तो चलिए ज्यादा इंतजार नहीं कराते तो बात करते हैं सुमित की। तो सुमित फाइनली सुनो शारदा 90.8 एफएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
0: कैसा फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है?
1: सर आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, नया एक्सपीरियंस है सर।
0: सेम मुझे भी अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके, क्योंकि ये आपके साथ मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है।
1: जी।
0: तो समय सबसे पहले आप मुझे बताएं कि शारदा यूनिवर्सिटी के इस प्रांगण में, ये तो रही बात रेडियो एफएम की, चूंकि आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, और शारदा यूनिवर्सिटी में आना कैसे हुआ, यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ की फैकल्टी कैसी है, कल्चरल एक्टिविटीज होती है उसके बारे में कुछ बताइए, अपने कोर्स के बारे में बताइए जिसका मैं नाम देख रहा हूँ जीएनएम कोर्स आप कर रहे हैं, सो प्लीज बताइए।
1: सर सबसे पहले शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में बता देता हूँ। ये तो सर एक अलग ही यूनिवर्सिटी है, मतलब इतने बड़े लेवल पे यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बच्चों को आने का अलग ही क्रेज रहता है। और मेरा जो कोर्स है जीएनएम जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, मैं यहाँ से नर्सिंग कर रहा हूँ, सेकंड ईयर में हूँ। तो यहाँ की जो फैकल्टी मेंबर है बहुत ज्यादा अच्छे हैं, फ्रेंडली नेचर है बिल्कुल, और बहुत सपोर्टिव हैं। जैसे कि मेरी फैकल्टी मैम ने कोई सजेस्ट किया था यहाँ पे आने के लिए।
0: ओह ग्रेट।
1: तो
0: उनका नाम बताइए।
1: सर मेरी मैम हूँ माधवी शर्मा मैम है।
0: ओह ग्रेट।
1: यस सर, वो हमें एमएसएन पढ़ाती हैं, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि यहाँ पे जाओ शारदा में। और सर शारदा एक मतलब बच्चों के लिए बहुत सपोर्टिव है, एक प्लेटफॉर्म खुद देता है कि बच्चे आगे निकले यहाँ से जाने के लिए।
0: तो आपको कैसा लग रहा है उन्होंने यहाँ सजेस्ट किया, आपको यहाँ एक मौका मिल गया, हम और आप बात कर पा रहे हैं?
1: सर ये ग्रेट फीलिंग है सर, मेरे लिए बहुत ज्यादा ग्रेट फीलिंग है।
0: ये हमारे लिए भी बहुत एक बड़ा कहते ना कि एक सुखद लम्हा है, इस लम्हे को हम कैद करना चाहते हैं।
1: जी जी।
0: और जो आपकी बातें वो अपने जो लिसनर्स हैं, जो हमारे श्रोता हैं, उन तक हम बातें पहुंचाएंगे जरूर। सुमित यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा, अगर आपके अंदाज में, क्योंकि आप सिंगिंग करते हैं, आपके बारे में, उस टैलेंट के बारे में जानेंगे जरूर, कोई अगर ब्रेक पर जाना चाहे आपके अंदाज में, तो कोई कैसे ब्रेक पर जाएगा?
1: सर ऐसा ब्रेक के लिए, मैं ब्रेक के लिए बना ही नहीं हूँ सर।
0: अच्छा, ब्रेक के लिए बना ही नहीं है, मतलब लगातार काम करना चाहते हैं,
1: रुकना ही नहीं चाहते, अभी तो सर स्टार्ट ही नहीं किया।
0: चलिए खैर मैं उस ब्रेक की बात नहीं कर रहा था, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हम लेना चाहते हैं जो कि म्यूजिकल ब्रेक है। सो आप कहीं जाएगा मत, मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे साथ हैं शारदा यूनिवर्सिटी का एक टैलेंट है जो कि बहुत अच्छे सिंगर है सुमित कुमार, उभरते हुए कलाकार है, राइजिंग स्टार इनको हम कह सकते हैं, इनके बारे में जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ और प्रोग्राम का नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें। खास बात यह कि आज एक शारदा यूनिवर्सिटी का टैलेंट हमारे बीच में है और यही हमारा उद्देश्य है कि शारदा यूनिवर्सिटी का रेडियो स्टेशन आपके लिए है, हम आपके लिए हैं। और अगर आपके पास कोई टैलेंट है, कुछ दिखाना चाहते हैं जमाने को, तो जरूर यहां आ पाइए और आपकी बात हम आपके श्रोताओं तक जरूर पहुंचाएंगे। तो सुमित, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया।
0: ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी आपके कॉलेज के एक्सपीरियंस के बारे में, आपके टीचर के बारे में जिन्होंने आपको यहाँ प्रमोट किया कि सुमित आप अच्छा गाते हैं, शारदा यूनिवर्सिटी का अपना एक रेडियो एफएम है, वहां जाकर आप मिलिए। और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं और आपके जो टैलेंट है उसको हम हमारे लिसनर्स तक हम पहुंचाएंगे। थोड़ा कुछ और बताइए अपने बारे में। अगर मैं आपसे कहूं कि डिटेल में मुझे बताइए कि ये जो शौक है, इसके शौक की शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई, किसने आपको गाइड किया?
1: जी सर, तो सर जब मैं स्कूल टाइम में था, 12th क्लास की बातें हैं, तो एक रफ्तार है हमारे जो रैपर हैं, उनका रियल नेम है दिलेन नायर, तो सर मैं उनको सुनता था, तो वहीं से मेरे को थोड़ा मोटिवेशन आया कि हाँ मैं भी ट्राई कर सकता हूँ इस फील्ड में। तो मैंने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले जो मैंने लिखा था वो सर रैप नहीं था, वो एक सॉन्ग था, एक मेन बात जो ये है। तो वहां से मैंने लिखना स्टार्ट किया, वहां से देख के। तो मैंने जब वो एक सॉन्ग कंप्लीट किया तो वहां से मुझे मोटिवेशन आया कि अब मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कुछ। तो सर मैं रफ्तार को जैसे सुनता था, जो मेरे मोटिवेशन में बहुत ज्यादा हेल्प की उन्होंने, तो वहां से मैंने सोचा क्यों ना अब ये जो मैंने सॉन्ग लिखा है ऐसा ही कोई रैप में कन्वर्ट करके देखूं। तो सर वहां से जब मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहले एक उसके बाद रैप बना के देखा, तो जो उन्हीं का था जो रफ्तार ने निकाला था एक बैक बेंचर करके, तो सर उन्हीं का हमने उठाया था वहां से, उनके गाने की 4 लाइन लेके सर मैंने पूरा रैप, एक सबसे पहला जो मेरा रैप था वो मैंने अपना बनाया था। और सबसे सर पहला जो मैंने YouTube पे अपना डाला था वो वही था मेरा भी, जो गाने का नाम था बैक बेंचर।
0: तो रिस्पांस कैसा मिला
1: सर उस गाने पे? अभी तक का सबसे ज्यादा अच्छा रिस्पांस आया है, 32K+ व्यूज जा चुके हैं सर।
0: nice,
1: जी
0: nice.
1: सर उस गाने पे।
0: हाँ, जब आप गाना लिखते हैं तो किस सोच के साथ आप गाने को लिखते हैं और फिर आप उसको किसके पास लेकर जाते हैं कि भाई या सर प्लीज आप मुझे गाइड करिए कि मेरा गाना सही लिखा गया है, या किसको इसको और कैसे मैं बेहतर बना सकता हूँ?
1: सर मेरे गाने बेसिकली जो अभी तक मैंने किए हैं और मैं कर रहा हूँ ये स्टोरी बेस्ड होते हैं। जैसे बैक बेंचर में मैंने स्कूल लाइफ बताई है, एक दूसरा सॉन्ग मेरा आया था झूठा इश्क, वो मैंने उसमें लव लाइफ बताई थी अपनी कि लव लाइफ कैसे होती है क्या। अब जैसे सर एक है मेरा, उसके बाद मैंने जो निकाला है मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास मेरे सॉन्ग का नाम है, तो सर उसमें मैंने एक स्टोरी बताई है कि मिडिल क्लास इंसान की कैसे
0: कहानी है, स्ट्रगल उसका,
1: जी जी कैसा स्ट्रगल है, तो वो एक है मेरा। तो मतलब मेरे जो थोड़े रैप हैं वो कहानी पे बेस्ड हैं, बाकी अभी मैं ऐसा कर रहा हूँ कि

0: हिप हॉप टाइप भी मैं जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिलता जा रहा है तो वैसे वैसे मैं उसको बढ़ाता जा रहा हूँ अपने उसको टैलेंट को, तो आगे भी सर ऐसा है कि अभी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स रेडी हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छा कर रहे हैं क्योंकि अभी तो एक छोटी सी शुरुआत है।
0: जी जी,
1: मंजिल बहुत दूर है, बहुत करीब जरूर आएगी जब आप छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रहे हो, तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। यहाँ पर सुमित एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं हमारे लेसन्स को, एक छोटा सा ब्रेक और उस पर एक गाना आपके लिए, सो कहीं जाएगा सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन 90.8 FM, मेरी यानी गगन के साथ।

0: हंसते मुस्कुराते इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम, मैं हूं आजीज हरदिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई टैलेंट है जिसको आप जमाने के बीच लेकर जाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं 01204060205 अर्थात हिंदी में। ये मैंने आपको बता दिया 120 40 60 205, एक बार पुनः इसकी पुनरावृत्ति कर मैंने आपको ये बात बता दी कि इसके माध्यम से आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। 90.8 FM@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। फिलहाल शारदा यूनिवर्सिटी का एक राइजिंग स्टार है जो कि हमारे बीच है, सुमित कुमार है, जो कि एक अच्छे रैपर है, बहुत अच्छा लिखते हैं, और इसके टैलेंट को इनकी फैमिली ने पहचाना, खुद इन्होंने पहचाना, इनकी टीचर ने पहचाना और इनके दोस्तों ने भी इनके टैलेंट को पहचाना। यही वजह है कि शारदा यूनिवर्सिटी में ये यूं कहें कि शारदा FM में ये अपने दोस्तों के साथ यहाँ आए, और मुझे लगा कि जब ऐसे अच्छे दोस्त हैं तो क्यों ना हम उनको ये दिखाएं कि रेडियो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से बातें होती हैं। तो सुमित, दोस्तों के बारे में क्या कहना चाहोगे?
1: सर, दोस्तों के बारे में सर ऐसा है कि मेरे कुछ लिमिटेड ही दोस्त हैं, मैं ज्यादा दोस्ती नहीं रखता हूं। और सर जो जितने भी हैं वो सर इतने अच्छे हैं कि बहुत सपोर्टिव हैं मेरे को लेके, मेरे मतलब वो ना सिर्फ इसमें म्यूजिकल में, मेरे को एज अ फ्रेंड वो अपने करियर में भी, जैसे मैं यहाँ पे नर्सिंग कर रहा हूँ तो वो उस फील्ड में भी मेरे को हेल्प करते हैं। तो वो ऑल ओवर वो जो मेरे फ्रेंड है वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करते रहते हैं मेरे को हर टाइम टू टाइम, पढ़ाई में भी लेके और गाने में भी लेके। और
0: वेरी गुड। लाइफ क्या नाम है दोनों दोस्तों के?
1: सर एक मोलश्री है सर, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वहाँ पे साथ में अभी हाई है हमारे।
0: जी जी जी।
1: और सर एक प्रथम है।
0: प्रथम है,
1: हाँ जी।
0: चलिए, इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं कहूंगा कि ये याराना आपका बना रहे, दोस्ती आपकी बनी रहे। तो सुमित, अब आते हैं कम टू द पॉइंट, यानी कि उसी मुद्दे पर आते हैं जिसके बारे में हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपके इस टैलेंट के बारे में जाना कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से आपने लिखना शुरू किया, कौन आपके आइडियल हैं जिनको आप मानते हैं। अब बात आती है फैमिली की, फैमिली का यहाँ मैंने जिक्र किया, फैमिली में किसने आपको सपोर्ट किया?
1: सर सपोर्ट सबसे पहले जो मेरे को फैमिली ने किया वो मेरी सिस्टर थी और ब्रदर थे।
0: क्योंकि वो आपसे बड़े हैं छोटे हैं?
1: हाँ सर, वो सबसे बड़े हैं, मतलब मैं सबसे छोटा हूँ अपनी फैमिली में, सबसे बड़ी मेरी सिस्टर है और उसके बाद मेरे ब्रदर, उसके बाद मैं।
0: तो वो क्या करते हैं दोनों?
1: सर मेरी जो सिस्टर है वो नर्सिंग ऑफिसर है, तो वहीं से उन्होंने मेरे को यहाँ पे नर्सिंग में डाल दिया।
0: ग्रेट, नाइस।
1: तो उसके बाद सर मेरे जो ब्रदर है वो बैंक में मैनेजर है।
0: उन्होंने बैंक में नहीं डाला?
1: उन्होंने बैंक में नहीं डाला।
0: ओके, तो उन्होंने आपके टैलेंट को पहचाना, उन्होंने आपको मोटिवेट किया कि आप अच्छा करो, लिखो, आगे बढ़ो।
1: यस सर।
0: अच्छा, मम्मी पापा की अगर मैं बात जानूं तो उनकी तरफ से कैसा रिस्पांस रहा?
1: सर स्टार्टिंग में तो मम्मी को मतलब इतनी नॉलेज है नहीं इस चीज के बारे में, तब मम्मी को जब मैंने दिखाया अपना गाना डाला तो मम्मी को खूब पसंद आया, तो मम्मी ने सपोर्ट किया। तो थोड़ा पापा है पीछे, मतलब डायरेक्टली तो सपोर्ट नहीं करते, इनडायरेक्टली वो करते हैं।
0: हाँ है भाई। तो, पापा चाहते हैं कि कुछ बन जाओ,
1: जी बन जाए,
0: और अच्छी तरीके से अपने करियर को स्थापित कर लो, खूब रुपया पैसा कमाओ।
1: जी सर।
0: लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इस फील्ड में रुपया पैसा नहीं है, खूब इज्जत है, खूब सम्मान है जब आप स्थापित हो जाते हैं।
1: जी सर।
0: तो सुमित, यहाँ पर मैं एक ब्रेक जरूर लूंगा, लेकिन ब्रेक से पहले मैं ये भी जानना चाहूंगा कि मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप जिम जाते हैं, आपने अपने आपको मेंटेन करके रखा है, तो ये शौक इसको और उसको कैसे बराबर मेंटेन करते हुए आप आगे बढ़ते हैं?
1: सर जैसे ये करियर ऐसा है, फील्ड ऐसी है कि इसमें सर पर्सनैलिटी भी काम आती है एज अ मॉडल, जैसे हमें शूटिंग करनी होती है, शूट करना होता है, तो अपनी पर्सनैलिटी मेंटेन करने के लिए तो सर मैं जिम काफी साल का एक्सपीरियंस हो गया मेरे को, 5-6 साल हो गए हैं
0: तब से जिम कर रहे हैं।
1: जी जी, जिम कर रहा हूँ मैं, तो काफी ट्रांसफॉर्मेशन भी की मैंने इस चीज को लेकर फील्ड के अकॉर्डिंग।
0: अच्छा, नाइस। अच्छा, खान पान का बड़ा मैटर रखा जाता है, योग का भी बहुत ध्यान रखा जाता है, अनुशासित होना भी बहुत जरूरी है,
1: डिसिप्लिन डाइट।
0: हाँ, तो उसके बारे में बताइए कि किस तरीके से आप एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि लोग तो अब बहुत आलसी हो गए हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते और उल्टा सीधा खा रहे होते हैं, नींद वो पूरी ले रहे होते हैं, मतलब आलसी भी हो गए, नींद लेना बहुत जरूरी है। तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो लोग हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हैं?
1: सर आज की डेट में तो सर हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे हैं, एज़ मैं जैसे नर्सिंग ऑफिसर है, हमें हॉस्पिटल में जो ड्यूटी लगती है तो लोगों को बहुत देखने को मिलता है, जैसे जंक फूड बहुत खाते हैं उन्हें, तो एब्डोमिन इन्फेक्शन काफी ज्यादा होने लगता है। तो आज की डेट में सर डाइट बहुत ज्यादा मैटर करती है, और सर मेरे लिए थोड़ा हार्ड वर्क हो जाता है क्योंकि सर क्लिनिकल्स में ड्यूटी वगैरह होती है, फिर उसके बाद सर असाइनमेंट्स होते हैं, उसके बाद सर जिम, और उसके बाद सर डाइट, और एक सर हॉस्टल का खाना, सर सबको पता है हॉस्टल लाइफ।
0: तो आप यहाँ रह रहे हैं?
1: जी हॉस्टल में रह रहा हूँ सर मैं। तो हॉस्टल में सर थोड़ी डाइट।
0: मैं एक बात कहना चाहूंगा यार, ये अक्सर बात मुझे सुनने को समझने को मिलती है, हॉस्टल का खाना देखो यार इतना बुरा नहीं होता, बिकॉज क्योंकि हर एक सिस्टम है। जैसे सपोज करिए कि हॉस्टल के जो देख रेख के केयर टेकर जिन्हें आप कहें, वार्डन जिनको आप कहें, वार्डन के ऊपर भी एक कमेटी होती है, उनके ऊपर एक कमेटी होती है, और कहा जाता है कि अन्य के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि खाना ऑब्वियसली बहुत अच्छा मिल रहा होता है, लेकिन हाँ मैं ये समझ सकता हूँ कि माँ का प्यार अलग है,
1: घर वाला स्वाद नहीं है,
0: वो सीन अलग हो सकता है। तो लेकिन दोस्त सुमित का कहना यही है कि अच्छा खाइए, अच्छा अपनी सेहत का ख्याल रखिए, एक्सरसाइज करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी सेहत में चार चांद लगते चले जाएंगे। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात मेंशन की कि जंक फूड जिसको हम कहते हैं कि फास्ट फूड जो कि बहुत जल्दी तैयार होता है, बहुत जल्दी आपकी सेहत को वो नुकसान भी पहुंचा रहा होता है। तो फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद मैं आपको मिलूंगा, यहीं कहीं जाएगा मैं, सुनते रहिए। मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुमित कुमार जो कि शारदा यूनिवर्सिटी का नर्सिंग डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, जेएनएम का कोर्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा ये गाना गाते हैं, बहुत अच्छे रैपर हैं, और इनके गाने के बारे में जरूर हम जानेंगे। तो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। और कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए और छोटे छोटे कदमों से आप निश्चित तौर पर आप अपनी मंजिल को पा ही लेंगे। जी हाँ, एक ऐसा ही उदाहरण मेरे सामने जुड़ा हुआ है। सुमित कुमार हैं, जो कि शारदा यूनिवर्सिटी के नर्सिंग डिपार्टमेंट से आते हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, जीएनएम का कोर्स कर रहे हैं। और इनकी जो शुरुआत रही, घर में एक नर्सिंग ऑफिसर भी हैं जो कि इनकी सिस्टर हैं, उन्होंने इनको प्रेरित किया। और वाकई शारदा विश्वविद्यालय में आकर कहते ना कि वेयर आर यू द वर्ल्ड इज हियर। जब आप एक यहाँ आएंगे, एक बार विजिट करेंगे, तो सुमित हम अपनी टैगलाइन बनाकर रेडियो पर प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं कि जब आप एक बार यहाँ आएंगे तो आप यहीं कर होके रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ का माहौल, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की पढ़ाई, प्लेसमेंट, बहुत सारी चीजें हैं। तो सुमित, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका कोई एक प्रोफेशनल नेम है या प्रोफेशनल कोई एक यूट्यूब है जिस पर आपकी वीडियोस होती हैं, लोग आपसे जुड़ सकें, आपसे बात कर सकें?
1: जी सर, मैं बताता हूँ। मेरा जो प्रोफेशनल नेम है, लेविन सुमित है। लेविन सर जो इंद्र जी के वेपन है, इंद्र जी का जो वेपन है उसको कहा जाता है लेविन, जिसका हिंदी में नाम है वज्र। हिंदी में वज्र कहते हैं,
0: वज्र।
1: हाँ, इसका मीनिंग थंडर स्टॉर्म, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बिजली निकलती है उनके में।
0: अच्छा,
1: तो लेविन का मतलब यही है।
0: ओके,
1: तो ये नाम मैंने ऐसा रखा कि लेविन सुमित मैंने इसलिए रखा कि कुछ रैपर हैं कि वो अपना नाम, जो रियल नेम होता है, हाइड करके वो कुछ दूसरा नाम रखते हैं कि उनसे लोग पहचाने जो। लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरा नाम प्यार से रखा हुआ है, उसके साथ मैं आइडेंटिटी के साथ वो अपनी दूसरे नाम, जो प्रोफेशनल नेम है, आगे लेके जाना चाहता
0: है। मैंने भी सोचा, मैं भी जब एक्टर बन जाऊंगा तो मैं भी अपने नाम के साथ चलूंगा।
1: जी सर,
0: ये बात आपने बहुत अच्छी कही, मैं भी इसी बात पर यकीन करता हूँ कि मेरा नाम गगन गौतम है। फर्स्ट नेम भी बहुत अच्छा है और सेकंड नेम भी मेरा माशाल्लाह बहुत प्यारा है, गौतम ऋषि के नाम पर हम गौतम है। इस तरीके से मुझे लगता है कि अपनी एक पहचान को बरकरार रखना, उसके साथ आगे चलना, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। सुमित, अगर फाइनली मैं आपसे कोई एक बहुत ही खूबसूरत गाना या यू कहें कि रैप सुनना चाहूँ, तो कौन सा आप हमारे लिसनर्स को रैप सुनाना चाहेंगे?
1: सर, मैं चार लाइन सुनाना चाहूंगा।
0: नहीं, तुम आठ सुनाओ बाबा, टाइम तुम्हारा है, बोलो।
1: सर, मैं अभी जो मैंने नया रिसेंटली सॉन्ग निकाला है, हाँ, बम भोले,
0: हाँ,
1: तो भोले बाबा पे मैंने कुछ सॉन्ग बनाया, तो वो, हाँ, उसकी लाइनें बताना चाहूंगा।
0: प्लीज।
1: भोले का रंग चढ़ा भंग, रगड़ भंग पिया मस्त जिया, भोले का फैन हूँ मैं, शिव का कैर हूँ मैं, विशिला जैर हूँ मैं, छोटा पत्थर तू पूरा कैलाश हूँ मैं, भोले तलाश में आ घूमू मैं तो तेरी चारों धाम में।

0: ना तेरे जैसा कोई मुझे सारे संसार में, दुश्मन का पे भूले सारे तेरे नाम से, काम बने मेरे सारे तेरे नाम से, बम बोले बोले तो बम बोले।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बोल, बहुत अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छा एक आपने ताना बाना बुनाया। तो भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर बनी है, बनी रहे, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: शुक्रिया।
1: फाइनली कुछ अगर आप कहना चाहते हैं कि उन लोगों के लिए जो फील्ड में आ रहे हैं, अपने करियर को आगे लेकर जाना चाहते हैं, एक अच्छे रैपर बनना चाहते हैं, क्या संदेश होगा?
0: सर सबसे पहली बात है कि खुद के अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए ये चीज करने की, क्योंकि सर कुछ सोसाइटी है कि वो इस चीज में थोड़ा सर जब स्टार्टिंग होती है, हम जैसे छोटे जैसे आर्टिस्ट हैं उनकी जब स्टार्टिंग होती है तो सर सोसाइटी थोड़ा बहुत रोक टोक करती है कि इस चीज में कुछ नहीं रखा। तो सर खुद से ना सर सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है इस चीज में। तो सर किसी की ना सुन के अपने दिल की करे, अपने मन की करे, जो टैलेंट है सर उसको आगे लेके जाए और कोशिश करते रहे सर, एक दिन अपने सपने पूरे जरूर होते हैं।
1: बेशक बेशक जरूर सपने पूरे होते हैं, लेकिन उन सपनों के सामने सच बात तो ये भी कि दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, और इसलिए कहा जाता है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, यानी कि ईश्वर खुदा माँ बाप की ब्लेसिंग्स काम आती चली जाती है, और निश्चित तौर पर फिर वो एक दिन आपका आता है जब आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं, अपने सपने को साकार कर लेते हैं। तो सुमित मुझसे बात करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा?
0: सर मेरे को बात करके सर आपसे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। सर ये आपसे एक मैं चीज सीखा हूँ यहाँ पे आके, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करूँ मैं सर।
1: थैंक यू। नहीं नहीं आप अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ बातें होंगी तो जरूर मैं फिर आपके साथ साझा करूंगा। सो लिसनर्स ये प्रोग्राम, ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, 01204060205 अर्थात 120 40 60 205 पर आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर बता सकते हैं। फिलहाल वक्त का इशारा हो चुका है, वक्त का इशारा जब होता है तो मुझे लेनी होती है अनुमति। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए, और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। टाटा बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: बरसात के मौसम में छोटे बच्चों में दस्त की समस्या आम बात है,
1: जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो घबराएं नहीं, हर दस्त के बाद बच्चों को ORS का घोल देते रहें।
0: साथ ही साथ 14 दिन तक लगातार जिंक की गोली देनी है।
1: अगर बच्चे की उम्र 2 महीने से ज्यादा और 6 महीने से कम है तो उसे आधी गोली माँ के दूध में घोल कर देनी है।
0: और अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो पानी के साथ 1 गोली रोजाना देनी है।
1: ध्यान रहे, दस्त रुक जाने के बाद भी जिंक की गोली 14 दिन तक देनी ही है।
0: ORS और जिंक की गोली आपको आशा दीदी या फिर नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्ध है। और हाँ, ध्यान रहे, स्तनपान जारी रखना है और खाने के लिए सुपाच्य पदार्थ जैसे दलिया, खिचड़ी इत्यादि दे सकते हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों की सहायता लें। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चले।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। HIV और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक HIV रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर HIV संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग HIV को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर HIV रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर HIV मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी HIV की जांच कराएं।
2: अधिक जानकारी के 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीवी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं रण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: राम राम दोस्त, आप सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहां है, सारी मुश्किलें आसान है, और यकीन मानिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सेहत सही तो लाभ कई। इस बारिश के मौसम में कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखें, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। बारिश के मौसम में अक्सर होता क्या है कि ऑन रोड हमें सीवर नजर नहीं आ रहा होता। ऑन रोड सीवर के ढक्कन कभी कभी खुले होते हैं, और बारिश के मौसम में जल भराव की जब स्थिति होती है तो वहीं जहां ढक्कन खुले हुए हैं घटना दुर्घटना घट जाती है। नाले ओवरफ्लो होते हैं जिसकी वजह से पानी नालों से निकलकर या नाली से निकलकर सड़क पर आ जाता है, जिसकी वजह से जल भराव की स्थिति हो जाती है। तो ऐसे समय में हमारा फर्ज बनता है कि सुरक्षित चले, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और साथ ही ऐसे मौसम में अक्सर हमने ये देखा है कि पोल्स यानी कि जो बिजली के खंभे होते हैं उसमें भी करंट दौड़ जाता है, जिसकी वजह से जाने अनजाने में जनधन हानि हो जाती है और कभी कभी तो बहुत बड़ी घटना घट जाती है। और बारिश के मौसम में हमने ये भी देखा है कि पेड़ गिर जाते हैं। बारिश के मौसम में हमने ये भी देखा है कि रोड धस जाती है। जब कोई स्पीड में गाड़ी चलाकर आ रहा है तो आगे उसे नजर नहीं आता कि रोड धसी है या नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि जो आपकी तय सीमा लिमिट है उससे थोड़ा कम चलिए, सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए। बारिश के मौसम में कैसा अपना ख्याल रखें, क्योंकि सच कहते हैं सेहत सही तो लाभ कई, इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना।
1: पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियां टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हेलो मेरी प्यारी दोस्त तारा।
1: अरे क्या हुआ टिंकू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?
0: ओ मुझे बुखार हो गया है।
1: अप्पा टिंकू को बुखार हो गया है? तो डॉक्टर ने क्या कहा टिंकू, क्यों हुआ बुखार?
0: पता नहीं, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है।
1: ओ नो नो नो नो नो टिंकू, बुखार में तेरी पड़ेगी भारी। और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत है, हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हुआ हो।
0: ओ हाँ, और कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने काटा था।

0: अब मैं क्या करूं तारा?
1: क्या हुआ तारा?
2: आ जल्दी आओ अब्बा। टिंकू तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले पापा मम्मी से कहो कि तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाए।
1: और हाँ, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं बेटा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मत लेना। ओके? कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
0: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
1: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना?

0: जरूर जाना, जरूर जाना।
1: अगर नहीं समझे तो मैं आऊंगी करने बार, जैसे आई थी पिछली बार।
2: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार, और ये मेरा आखिरी वार।
1: तुम जीती, मैं हारी, तारा तुम हमेशा रखती हो पूरी तैयारी।
2: दोस्तों, अब मच्छरों को हराने की बारी तुम्हारी। तो क्या टीम तारा है मच्छरों से लड़ने को पूरी तरह तैयार?
3: टीम तारा है तैयार।

0: ढूंढना नहीं मच्छरों से बचने के उपाय।
1: फिलहाल तारा अप्पा की ओर से बाय बाय।
2: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
3: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
4: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
3: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
4: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
3: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
5: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: बाबूजी जरा धीरे चलो।
7: आज मैं बात कर रहा हूँ कि बारिश के मौसम में किस तरीके से आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि सच बात तो ये कि सेहत सही तो लाभ गई, और सच कहते हैं जो कहते हैं कि जान है तो जहान है। बारिश के मौसम में सुरक्षित चलिए, स्पीड का ध्यान रखिए, यानी कि थोड़ी कम रखिए स्पीड, क्योंकि आगे गड्ढा है क्या है कुछ नजर नहीं आता। बारिश के समय में बिजली के खंभों में करंट उतर जाता है तो उससे भी अपने आप को बचाकर रखना है। बारिश के मौसम में पेड़ गिर जाते हैं तो घटना दुर्घटना घट सकती है। जब आप ऑन रोड हैं तो सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए। इसके अलावा बारिश के मौसम में सेहत को तंदुरुस्त बनाने के लिए क्या करें क्या ना करें उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात आती है खान पान का। जब खान पान का मैं जिक्र

नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको, इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए,

0: टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हेलो कौन? अरे हम बोल रहे, हेलो कौन? अरे हम बोल रहे, हम बोल रहे, हम बोल रहे, हम बोल रहे, हम बोल रहे,
1: सुनो शारदा।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: सुनो शारदा।
3: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। बारिश के मौसम में किस तरीके से हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्या करें क्या ना करें, ये जानना बहुत जरूरी है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि बारिश के मौसम में ऑन रोड जब आप चल रहे होते हैं, जल भराव की वजह से कहीं कोई गड्ढा है हमें नजर नहीं आता, इसलिए सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे, अपनी गाड़ी की जो स्पीड तय है उसे थोड़ा कम रखिए। इसके अलावा घर से थोड़ा 5 से 10 मिनट पहले आप निकलें ताकि ऑफिस आप समय पर पहुंच पाए। बिजली के खंभों में करंट आ जाता है, उससे अपने आप को बचा कर रखिए। और ऑन रोड अक्सर पेड़ गिर जाते हैं, तो वहां पर कोई घटना दुर्घटना ना घटे वहां से अपने आप को बचा कर निकालिएगा। और कुछ खास बातें जैसे कि घर की देखभाल के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि खान पान का ध्यान रखिएगा, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें आप खा सकते हैं और बाहर के खाने से परहेज करिएगा। अब बात कर लेते हैं घर की देखभाल की, यानी कि होम केयर। मच्छरों को पनपने न दें, क्योंकि जब बीमारी नहीं होगी और सेहत सही होगी तो लाभ कई होंगे। घर के आसपास कूलर या गमलों में पानी जमा न होने दें ताकि डेंगू मलेरिया से बचाव हो सके। सीलन और फंगस से अपने आप को बचा कर रखें। अलमारी और कपड़ों को सूखा रखने के लिए कपूर या सिलिका जेल के पाउच का इस्तेमाल आप करें। वेंटिलेशन जरूरी है, जब बारिश थमे तो थोड़ी देर खिड़कियां खोलें ताकि घर के अंदर की नमी और उमस कम हो सके। सफर आपका सुरक्षित रहे इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, यानी कि अगर आपका बदन गीला है, कपड़े गीले हैं तो तुरंत बदल लें। अगर आप बारिश में भीग कर आ रहे हैं तो तुरंत नहाकर सूखे कपड़े पहने ताकि सर्दी खांसी ना हो। रेन गियर साथ रखें, यानी घर से बाहर निकलते समय छाता या रेनकोट हमेशा अपने साथ रखें। गाड़ी धीरे चलाएं, यानी सड़कों पर फिसलन और जल भराव यानी कि वाटर लॉगिंग के कारण दुर्घटना का खतरा रहता है, इसलिए स्पीड कम रखें। और वर्क फ्रॉम होम लोगों को मिल जाता है, मिलना शुरू हो जाता है, तो ऐसे में आप घर पर रहकर अपनी फैमिली के बीच में वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, पसंदीदा फिल्में देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं और मनोरंजन के लिए बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। FM यही कहता है कि सेहत सही तो लाभ कई। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए वन एंड ओनली रेडियो FM सुनो शारदा 90.8 FM, जो कि अपने ग्रेटर नोएडा का एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
4: आजा प्यार की होड़ी
5: डील बोले तो
6: हार्ट हार्ट
7: हवा यार सौदा सौदा
6: ओहो
4: दोनों डील करा सील
6: टाइट टाइट वेरी टाइट।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट मिलकर के एक स्वास्थ्य जन जागरूकता मुहिम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही लाभ कही, ताकि हमारे जो समुदाय के लोग हैं वो सब जागरूक रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने देश की तरक्की में अपना योगदान दें। और आप सभी जानते हैं इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में बीमारियां भी होती हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हमें खाने चाहिए, कैसे बचना चाहिए, क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर आर के शर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। गर्मी का मौसम है, गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती धूप है, तो किस तरह से लोग अपना इस मौसम में ध्यान रखें?
1: इस मौसम में सबसे पहले ये है कि धूप में काम कम से कम करें, सुबह शाम ज़्यादा करें, धूप में सिर पर कपड़ा रख कर चलें, पानी बोतल या साथ में इलेक्ट्रॉल ORS या जो भी चीज़ अवेलेबिलिटी हो, या घर से अपने एक छाछ बेलपत्थर का जूस या जो भी जूस लेकर चल सकते हैं वो लेकर चलें साथ में, ताकि बीच में कहीं उसे पी सकें।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, गर्मी हो या मौसम खराब हो, जो काम करने वाले हैं उनको तो अपना काम करना ही है, जाना ही है,
1: काम बहुत जरूरी है, काम बिना तो कुछ नहीं है।
0: तो काम पर जो लोग जाते हैं, खास करके जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, तो उनको कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए?
1: उनको यही सिर पर कपड़ा रखे हर समय
0: जी।
1: दूसरा ये कि कम से कम जो है मतलब ऐसे ही समय यदि देखें बहुत ज्यादा चिलचिलाती धूप है, 2 घंटे का टाइम होता है 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, उस समय थोड़ा सा जो है कम काम करें या रेस्ट करें।
0: और
1: सुबह बहुत जल्दी से काम कर सकते हैं, शाम को भी देर तक काम कर सकते हैं, उस समय थोड़ा ठंड रहती है, पैर में जो है सब ज़्यादा परेशानी आती है।
0: तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो काम है उसको जो मौसम ठंडा ठंडा होता है थोड़ा, तो उसी में निपटा दें, और जो धूप होती है
1: उसमें आराम करें,
0: उसमें आराम
1: वहाँ भी जगह मिल जाए, अपना लेबर है तो अपना कहीं पेड़ है कुछ है या शेड है कहीं भी किसी तरह का जगह है उनको वहाँ पर अपना।
0: तो डॉक्टर साहब ये तो बात रही कि धूप से गर्मी से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, अब ये जो मौसम होता है ना बीमारियां भी हो जाती हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा होती हैं इस मौसम में?
1: खास तौर से जो है आपको एक तो उल्टी दस्त आते हैं, दूसरा बाजार का खाना पीना कहीं खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली तो गला खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, उससे लूज मोशन हो जाते हैं, तो बचाव करें। बाजार का खाना कम से कम खाएं, ना खाएं तो अच्छा है, और यदि बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो बहुत हल्का या कम खाएं।
0: तो जैसे आपने बताया कि दस्त की बमीमारी हो जाती है, उल्टी की बीमारियां भी हो जाती हैं,
1: हीट स्ट्रोक
0: हो जाता है,
1: बुखार आ जाता है,
0: बुखार भी आ जाता है, अब बच्चों में जैसे डायरिया भी होता है, तो इसके क्या कुछ कारण हैं?
1: डायरिया का भी एक मेन कारण है धूप में, यदि घर में रहते तो नहीं होता इतना, लेकिन बाहर के आना जाना रखते हैं औरतें हैं बच्चों को लेकर कई रिश्तेदारी में आना जाना कर रही हैं, और धूप में गर्मी में है तो उनको उल्टी दस्त के ज़्यादा चांसेस है।
0: तो जिन बच्चों को मान लीजिए डायरिया हो गया है, कभी ऐसा देखा जाता है उल्टी भी है और उसको
1: लूज मोशन भी है,
0: तो किस तरह से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है?
1: सबसे पहले तो उनको यही है कि थोड़ा सा उसको कोई उल्टी के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि उल्टी जब तक नहीं रुकेगी दस्त वाली दवा भी नहीं पचेगी, तो सबसे पहले उसको उल्टी कंट्रोल करने के लिए लिक्विड आता है उल्टी के दस्त रोकने के लिए, उसके बाद ORS का पानी पिलाइए उसको, ORS का लिक्विड भी आता है रेडीमेड बना हुआ, और ORS का जो पैकेट घोल के बना सकते हैं। तीसरा फिर उसको दस्त की दवा दें, कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती है, इन्फेक्शन नहीं है पेट में ज़्यादा तो खाली जो है दूध मोशन के लिए कोई टैबलेट वगैरह या लिक्विड में दे सकते।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूर दराज में कोई रहते हैं, मान लीजिए रात में ये दिक्कत हो गई, अब वो डॉक्टर साहब के पास जा नहीं सकते उस दौरान, तो उस दौरान वो क्या कुछ

0: उपाय अपना सकते हैं,
1: घरेलू उपाय हैं, नमक चीनी का घोल ले सकते हैं। ORS तो लगभग गांव-गांव आजकल सब जगह मिल जाता है, क्योंकि आशा आंगनबाड़ी के सबके पास में ORS रहता है, तो ORS का पानी तो पिला ही दें कम से कम, यदि और दवा भी नहीं मिलती है तो, और दवा मिल जाए, क्योंकि अब तो स्टोर भी काफ़ी लगभग हर गांव में एक आध कहीं ना कहीं स्टोर है, तो वहां से उल्टी की दवा तो ले ही सकते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप ORS की सिफारिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या चीज़ है ORS?
1: ORS एक जीवन रक्षक घोल है
0: जी,
1: और खाली दस्त उल्टी के लिए नहीं है, ये किसी भी हीट स्ट्रोक में गर्मी के समय में, या आपको देख रहे हैं कि हमें थकान भी हो रही है कहीं पे, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तब भी ORS का घोल जो होता है काम।
0: तो कहने का मतलब आपका यही हो गया कि अगर मान लीजिए कोई हमें बीमारी भी नहीं है गर्मी के मौसम वाली,
1: तब भी उसको ले सकते हैं,
0: तब भी हम उसको ले सकते हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है कि भाई हम अपने स्वस्थ रहें, तो किस तरह से उसकी दिनचर्या होनी चाहिए?
1: दिनचर्या तो यही है कि सुबह जल्दी उठे
0: जी,
1: कुछ एक्सरसाइज व्यायाम अपना करें, काम भी करें लेकिन व्यायाम सबसे पहले है, ताकि इससे इसमें फुर्ती आ जाए। दूसरा, कम खाना और गम खाना, ये दोनों चीज़ साधन ऐसी है जिससे हमेशा स्वस्थ रहोगे, मन भी शांत रहेगा और शरीर भी ठीक रहेगा।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, जो कार्यक्रम चल रहा है सेहत से ही लाभ कही, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बहुत अच्छा है प्रोग्राम आपका ये, और इस चीज़ को जागरूकता के लिए जगह जगह इसको सुनाया जाए, बताया जाए, जो भी अच्छे आपको जो कहीं पे इस तरह की क्लिप मिलती है तो आपको जो बाहर उसको पब्लिक में सुनाया जाए।
0: आखिर में हमारे जो सुनने वाले हैं श्रोता हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे?
1: गर्मी से बचें, थोड़ा सा तंग हो सकता है, जितना हो सकता है ये नहीं कि काम बंद कर दें, बाहर का बाजार का खाना कम से कम खाएं, बहुत ही मजबूरी में बाहर का खाना खाएं, घरेलू लिक्विड जो लें, मट्ठा हो, कोई मैंगो का जो आजकल जैसे पना बना लेते हैं वो ले लो, बेल पत्थर का जूस ले लो, ORS का पानी ले लो, ये घर से लेके चलें कुछ, और घर से एक बोतल पानी भी लेके चलें इसमें।
0: बिल्कुल डॉक्टर RK शर्मा जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है रेडियो के माध्यम से, और हमारे जो सुनने वाले हैं समुदाय के लोग हैं ज़रूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे, और जो भी आपने बातें बताई हैं उनको अपने जीवन में अपनाएंगे। हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर और कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं इस कार्यक्रम में वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जुड़ी हुई है एक नन्ही सी जान की जिंदगी के पहले घंटे से। जी हाँ, ये नवजात शिशु के बारे में है, उसके इस संसार में सांस लेने के पहले घंटे के बारे में। इसमें बहुत सारे पहलू शामिल हैं। बच्चे का पहली बार इस दुनिया में सांस लेना, पहला घंटा, माँ का पहला दूध, माँ और पिता का पहला स्पर्श, परिवार के सदस्यों का स्पर्श और फिर शुरुआती महीनों में उसका शारीरिक और मानसिक विकास। दोस्तों, ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस पोषण पखवाड़े का विषय है नवजात शिशु के पहले 6 महीने में उसकी देखभाल। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आपके अपने चहेते सिहतिया भैया और टीकन भाभी जी हमारे स्टूडियो में साथ में हैं, आपसे बातचीत करेंगी और आपको इस विषय पर विस्तार से जानकारी देंगी। तो सबसे पहले टीकन भाभी और सिहतिया भैया, हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: भाई कपूर साहब, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद, आदाब, नमस्कार। एक बात तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मुझे और टीकन देवी को न बुलाते तो भी हम चले आते, क्योंकि ये हमारा घर है, हमारा कार्यक्रम है और हमारे श्रोताओं के साथ हमें साझा करना है कि हमारे पास क्या खास बात है। चलिए बात पर आता हूं। अभी हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं, एक सेमिनार अटेंड करके वहां चर्चा हुई इसी मुद्दे पर और चर्चा थी कि नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी कैसे लाई जाए। अरे टीकन, आप क्या कहना चाहती हैं इस विषय पर?
2: आपने हमें आमंत्रित किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का जो विषय है वो बेहद जानकारी की जरूरत हर उस आम नागरिक को है जिसके बारे में बच्चों का ख्याल कैसे रखें, खासकर 6 महीने में। उसके लिए जो आज आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। लेकिन इसी के साथ ये भी कहना जरूरी हो जाता है कि भारत में शिशु दर यानी इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट में लगातार कमी आई है, लेकिन यह अभी भी एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है। SRC बुलेटिन 2024 के अनुसार भारत का IMR 24 प्रति 1000 जीवित जन्म है। इसका मतलब ये है कि हर 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से लगभग 24 बच्चे अपना पहला जन्म मना नहीं पाते और ये 2023 से 1% कम हुआ है।
0: बिल्कुल, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इस मृत्यु दर का आखिर कारण क्या है।
1: देखिए कपूर साहब, यानी कि शशि कपूर साहब, नवजात बच्चों के लिए सबसे जोखिम भरा समय जन्म के बाद का पहला महीना, खासकर पहला दिन और पहला सप्ताह होता है। हमें बताया गया है कि WHO के अनुसार, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, अधिकतर नवजात मौतें जीवन के पहले सप्ताह में होती हैं और उनके मुख्य कारण हैं समय से पहले जन्म, जन्म के समय सांस लेने में दिक्कत, संक्रमण और जन्मजात समस्याएं। कपूर साहब, आपको कुछ कहने से पहले या टीकन को मैं सुनने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जब मैं इस आंकड़े को पढ़ रहा था, सोचिए कि मैं परेशान हो गया। अगर वही बच्चा जब दुनिया में जन्म लेगा, पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो देश का एक नाम रोशन कर सकता था। क्यों टीकन, आप क्या कहना चाहेंगे?
2: बिल्कुल, अक्सर लोग सोचते हैं कि बच्चा पैदा हो गया तो अब सबसे बड़ा काम हो गया, माँ और बच्चे दोनों ठीक है। लेकिन सच तो यह है कि बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा उसकी पूरी जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में पिछले कुछ सालों में शिशु मृत्यु दर कम हुई है, लेकिन आज भी कई नवजात बच्चे ऐसी वजहों से अपनी जान गंवा देते हैं जिन्हें सही जानकारी और समय पर देखभाल से रोका जा सकता है।
0: बिल्कुल, तो सिहतिया भैया, आप ये बताइए कि गोल्डन आवर या यूं कहे सुनहरा घंटा क्या है? क्या पहला घंटा ही गोल्डन आवर कहलाता है?
1: भाई बिल्कुल सही कहा आपने, बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत अहम यानी कि खास होता है। इसी समय ये तय होता है कि बच्चा सुरक्षित रहेगा या उसे संक्रमण, ठंड लगने, सांस की दिक्कत या दूसरी परेशानियों का खतरा बढ़ जाएगा।
0: यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक घंटा नहीं बल्कि बच्चे के पूरे भविष्य की नींव है।
2: जी बिल्कुल, इस पहले घंटे में कुछ बहुत जरूरी काम किए जाते हैं, जैसे बच्चे को तुरंत माँ के सीने से लगाना, उसे गर्म रखना, सांस सही चल रही है या नहीं चल रही ये देखना, और सबसे जरूरी जन्म के पहले घंटे के अंदर ही माँ का दूध पिलाना, माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, बच्चे का पहला टीका माना जाता है। यह बच्चे के रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है और कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है।
1: भाई टीकन, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारे श्रोताओं को बताया समझाया। श्रोताओं मैं आपको बताना चाहूंगा, कपूर साहब इस बात पर गौर फरमाएगा कि कई लोगों को जानकारी होती नहीं है और उस पीले गाढ़े दूध को वो बच्चों को कहीं कहीं पिलाती नहीं है, जबकि विशेषज्ञ डॉक्टर्स कहते हैं कि वही पीला गाढ़ा दूध जिसको कहा भी टीकन ने कोलेस्ट्रॉल बहुत लाभदायक होता है। और अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर चीजें बहुत सरल है, सही जानकारी, परिवार का सहयोग, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद और समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग, ये सब मिलकर नवजात बच्चों की जान बचा सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो साथियों आज के इस खास कार्यक्रम में हम विस्तार से समझेंगे नवजात बच्चों की देखभाल कैसे करें, बच्चों को गर्म क्यों रखना जरूरी है, स्तनपान कब शुरू करना चाहिए, कौन कौन से खतरे के संकेत होते हैं और परिवार क्या सावधानियां रख सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।

0: तो साथियों एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना रेडियो स्टेशन और कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में आज एक हम खास विषय पर बात कर रहे हैं और आज हमारी अपनी जानी पहचानी आप सब भी जानते हैं टीकन देवी और सिहतिया भैया दोनों ही हमें बताएंगे कि जन्म के पहले घंटे में क्या करना जरूरी है, माँ का पहला दूध क्यों इतना महत्वपूर्ण है और परिवार नवजात बच्चे को सबसे मजबूत शुरुआत कैसे दे सकता है। लेकिन सिहतिया भैया अक्सर लोग पूछते हैं कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे को कौन कौन से टीके लगते हैं, क्या ये भी उतने ही जरूरी हैं?
1: बिल्कुल जरूरी हैं शशि कपूर साहब। जिस तरह माँ का पहला दूध बच्चे की पहली सुरक्षा है, उसी तरह जन्म के समय दिए जाने वाले टीके भी बच्चों को कई गंभीर बीमारियों से बचाने की दिशा में पहला कदम होते हैं भाई।
2: बिल्कुल, भारत के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में जन्म के समय सबसे महत्वपूर्ण टीके मुफ्त दिए जाते हैं। इसमें BCG, हेपेटाइटिस बी की जन्म खुराक और ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV की 0 खुराक शामिल है।
1: मैं इन टीकों से बच्चे को

0: टीबी, हेपेटाइटिस बी और पोलियो जैसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षा मिलनी शुरू होती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जन्म के बाद बच्चे का टीकाकरण समय पर करवाया जाए और उसका टीकाकरण कार्ड सुरक्षित रखा जाए।
1: यानी सेहतिया भैया, आपके कहने का मतलब ये है कि बच्चे की मजबूत शुरुआत के लिए दो बातें साथ साथ जरूरी है, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान और समय पर जन्म खुराक वाले टीके।
0: भाई मैं भी यहाँ एक बात साफ करना चाहूँगा, बच्चे के दिमाग का विकास बाद में शुरू नहीं होता, बच्चा जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। वो माँ की आवाज पहचानता है, स्पर्श महसूस करता है, दूध पीता है, सुरक्षित या असुरक्षित महसूस करता है। इसलिए नवजात देखभाल केवल बीमारी से बचाने की बात नहीं है, ये बच्चे के दिमाग, शरीर और भावनात्मक विकास की नींव है।
1: अच्छा टीकन भाभी, बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, उसे अभी क्या समझ आता होगा, लेकिन आप कह रही हैं कि जन्म के तुरंत बाद से ही बच्चे के विकास की शुरुआत हो जाती है।
2: बिल्कुल आरजे बाबू, बच्चा भले ही बोल नहीं सकता लेकिन वो महसूस करता है। माँ की छाती से लगना, माँ की आवाज़ सुनना, पहला दूध पीना, ये सब उसके लिए सुरक्षा और जीवन की शुरुआत है। शुरुआती समय में मजबूत नींव जन्म के पहले घंटे में ही पड़नी बहुत जरूरी होती है, इसीलिए जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत कीमती माना जाता है और इसीलिए इसे गोल्डन आवर भी कहते हैं।
1: अच्छा तो सेहतिया भैया, आप बताइए कि ये गोल्डन आवर टीकन भाभी जिसकी बात कर रही हैं, इतना जरूरी क्यों होता है?
0: भाई सवाल आपका बहुत अच्छा है। तो बात निकलकर ये सामने आती है कि जन्म के बाद पहले घंटे में कोशिश होनी चाहिए कि बच्चा माँ की छाती से लगे और स्तनपान शुरू हो, यानी कि बच्चा माँ का दूध पी पाए। माँ का पहला दूध बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो दूध जिसके बारे में अभी टीकर ने बताया था, कोलेस्ट्रॉम, ये बच्चे को शुरुआती जरूरी आहार देता है, संक्रमण से बचाने में मदद करता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। माँ के दूध में ऐसे जरूरी तत्व होते हैं जो बच्चे के दिमाग और शरीर दोनों के विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं। भाई
2: और यहाँ एक सबसे बड़ी गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। कई जगह पहला पीला गाढ़ा दूध देखकर कहते हैं कि ये खराब है, इसे फेंक दो, लेकिन ये बहुत गलत बात है। पहला पीला दूध बच्चे के लिए अमृत जैसा है, इसे फेंकना नहीं है, बच्चे की यही पहली सुरक्षा है।
0: बहुत सही बात कही कपूर साहब। देखो जो मैं बात कर रहा था, टीकन ने बहुत समझदारी की बात कही है।
1: बिल्कुल, तो टीकन भाभी और सेहतिया भैया, आप दोनों की बातों से एक संदेश बिल्कुल साफ है, पहला पीला दूध फेंकना नहीं है बल्कि बच्चे को देना है।
2: जी बिल्कुल, और जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने की कोशिश करनी है। अगर बच्चा तुरंत दूध नहीं पकड़ पा रहा है तो घबराने की बात नहीं है, माँ भी सीख रही है, बच्चा भी सीख रहा है। नर्स, आशा दीदी, ANM और डॉक्टर्स की मदद ली जाना बहुत जरूरी है।
0: दोस्तों स्तनपान में सही पकड़, सही स्थिति और धैर्य बहुत जरूरी है। कई बार परिवार जल्दी निष्कर्ष निकाल लेता है कि माँ का दूध नहीं आ रहा, शुरुआती दिनों में दूध थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन नवजात बच्चे का पेट भी छोटा होता है, इसलिए माँ को दोष देने की जगह सहयोग देना चाहिए। दोस्तों और टीकन और कपूर साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा, भाई जब मेरे भी घर में किलकारियां गूंजी थी तो हमारे बच्चे की जो माँ है वो भी परेशान हो गई थी, क्योंकि बच्चा अस्पताल में था, मैडम भी अस्पताल में थी, तो जो सीनियर नर्स वहाँ होती हैं या टीकन जो अनुभवी हमारी आया होती हैं या हमारी घर की अनुभवी महिलाएं होती हैं, उन्होंने हमें बड़ा संभाला कि आप डरे नहीं, घबराए नहीं, और वही बात टीकन ने अभी अभी आपके सामने रखी।
1: बिल्कुल, बहुत से घरों में जन्म के बाद बच्चे को शहद, घुट्टी, पानी या कोई और चीज देने की परंपरा होती है, तो टीकन भाभी जी इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
2: नवजात बच्चों को माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए जब तक डॉक्टर कोई अलग सलाह ना दे। शहद, घुट्टी, पानी, बाहर की कोई चीजें बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। पहले 6 महीनों तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए, ना पानी, ना शहद, ना घुट्टी। माँ का दूध बच्चे के लिए पूरा भोजन होता है।
1: लेकिन मैं सेहतिया भैया आपसे जानना चाहूँगा कि गर्मी में बच्चे को पानी भी नहीं देना चाहिए?
0: भाई सवाल तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। क्योंकि इसके बाद जो जवाब आने वाला है जो हम सबके लिए बड़ा लाभकारी है। पहले 6 महीने तक माँ का दूध ही पर्याप्त होता है। जब तक डॉक्टर किसी विशेष स्थिति में अलग सलाह न दे, माँ के दूध में पानी भी होता है और जरूरी तत्व भी, इसलिए अलग से पानी देने की जरूरत नहीं होती।
1: लेकिन बच्चा अगर बार बार रोता है तो परिवार सोचता है कि बच्चा भूखा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी टीकन देवी जी?
2: देखिए, हर रोना भूख नहीं होता है। बच्चा गीलापन, गर्मी, ठंड, नींद, पेट की असहजता या गोद की जरूरत को लेकर भी रो सकता है। शुरुआती दिनों में बार बार दूध पीना भी सामान्य है। माँ को शांत माहौल, पानी, खाना, आराम, परिवार का भावनात्मक रूप से उनका साथ देना बहुत जरूरी है, ना कि ताने देकर उसे परेशान करना।
1: यानी माँ की सेहत और बच्चे की सेहत अलग अलग नहीं है?
2: बिल्कुल आरजे बाबू, अगर माँ थकी है, भूखी है, डरी हुई है, लगातार दबाव में है तो स्तन पान भी प्रभावित हो सकता है। परिवारों को माँ को संभालना होगा। सिर्फ सलाह देना काफी नहीं है, काम में हाथ बटाना भी बेहद जरूरी है।
0: और भाई, पिता की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिता माँ को पानी दे सकता है, खाना खिला सकता है, रात में सहयोग कर सकता है, रिश्तेदारों की अनावश्यक सलाह से माँ को बचा सकता है दोस्तों, और बच्चे की देखभाल में शामिल हो सकता है। नवजात देखभाल केवल माँ का काम नहीं है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा जो सारी बातें मैंने अभी अभी आपको बताई।
1: बिल्कुल सियदिया भैया, वैसे भी आपकी बातों का हमारे जो सुनने वाले हैं विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं।
0: क्या बात?
1: लेकिन अब बात करते हैं त्वचा से त्वचा के संपर्क की। सियदिया जी, ये क्या होता है और क्यों जरूरी होता है?
0: भाई, त्वचा से त्वचा संपर्क का मतलब है कि बच्चे को माँ या देखभाल कर्ता की छाती से सीधे लगाया जाए। सुरक्षित तरीके से इसी को कंगारू केयर भी कहते हैं दोस्तों। इससे बच्चे को गर्माहट मिलती है, वो सुरक्षित महसूस करता है और स्तनपान में भी मदद मिलती है। ये खासकर कम वजन वाले या समय से पहले जन्मे बच्चों के लिए बहुत लाभकारी हो सकते हैं।
2: बिल्कुल, बच्चा माँ की धड़कन सुनता है, माँ की गर्माहट महसूस करता है और शांत हो जाता है। यह केवल शरीर की गर्माहट नहीं है आरजे बाबू, यह भरोसे की गर्माहट है। बच्चे के दिमाग और भावनात्मक विकास के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी भी है।
1: तो क्या पिता भी ऐसा कर सकता है सियतिया भैया?
0: भाई, सवाल का जवाब है हाँ। सही तरीका सीखकर पिता भी त्वचा से त्वचा संपर्क दे सकते हैं, खासकर जब माँ को आराम चाहिए या वो थकी हुई है। लेकिन तरीका स्वास्थ्य कर्मी से सीखना चाहिए। बच्चों की नाक और मुंह खुले रहे, बच्चा दबे नहीं और वो आराम से सांस ले रहा हो, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों।
2: बिल्कुल, पिता की भूमिका जन्म के पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। सिर्फ खर्च उठाना पिता की भूमिका नहीं है, बच्चे को गोद में लेना, माँ का साथ देना, बच्चे को गर्म रखना और माँ को भावनात्मक सहारा देना, ये भी पिता की जिम्मेदारी है आरजे बाबू।
1: बिल्कुल, तो साथियों अब हम कुछ आम गलत फहमियाँ दूर करते हैं। पहली गलत फहमी, पहला पीला दूध खराब होता है। टीकन देवी जी क्या कहना चाहिए?
2: सच्चाई, पहला पीला दूध बहुत लाभकारी होता है, इसे बच्चों को जरूर देना चाहिए।
1: दूसरी गलत फहमी समाज में ये है कि नवजात को शहद या घुट्टी देना जरूरी होता है।
0: सच्चाई ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए, जब तक डॉक्टर अगली सलाह आपको न दे।
1: और टीकन भाभी, तीसरी गलत फहमी है माँ का दूध कम है तो तुरंत ऊपर का दूध शुरू कर दे।
2: सच्चाई ये है आरजे बाबू कि पहले सही स्तनपान सहायता आपको उसके लिए लेनी चाहिए। माँ को दोष ना दें और स्वास्थ्य कर्मी से मदद लें, ताकि माँ को दूध को बच्चे को पिलाने में मदद मिल सके।
1: और चौथी गलत फहमी ये है कि नवजात देखभाल सिर्फ माँ का ही काम होता है।
2: सच्चाई पिता, दादी, नानी, परिवार और स्वास्थ्य कर्मी सबकी भूमिका बनती है आरजे बाबू, सिर्फ माँ की ही नहीं।
1: बिल्कुल। अब सियतिया भैया, बहुत ही जरूरी सवाल आपसे, कि किन संकेतों पर परिवार को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए।
0: भाई अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा, बहुत सुस्त है, तेज या कठिन सांस ले रहा है, शरीर बहुत ठंडा या बहुत गर्म लग रहा है, त्वचा नीली पड़ रही है, दौरा जैसा लग रहा है, लगातार रोए जा रहा है या बिल्कुल नहीं रो रहा, तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं। नवजात बच्चे पर घरेलू प्रयोग नहीं करने चाहिए।
2: बिल्कुल, अगर बच्चा समय से पहले जन्मा है, उसका वजन कम है, तो आपको सतर्क रहना बेहद जरूरी है। ऐसे बच्चों को नियमित जांच, स्तनपान, गर्माहट, स्वास्थ्य कर्मी की सलाह की बेहद ज्यादा जरूरत होती है।
1: बिल्कुल। अच्छा सियादिया भैया, अभी जो हमारी बातचीत हो रही है, आज का विषय बड़ा ही खास है, तो ये जो पूरी बातचीत है हमें क्या याद दिलाती है, क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से?
0: देखिए भाई, ये बात हमें याद दिलाती है कि बच्चे का दिमाग, शरीर और भविष्य शुरुआती देखभाल से बनता है। दोस्तों अच्छी देखभाल केवल खाना नहीं है, इसमें स्तनपान, सुरक्षा, स्पर्श, साफ सफाई, टीकाकरण, माँ का स्वास्थ्य और परिवार का सहयोग सब शामिल है।
2: बेहद जरूरी बात कही आपने सेहतिया जी। हर घर 5 संकल्प ले सकता है, गर्भवती महिला को अच्छा भोजन और आराम दे सकता है, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने में मदद कर सकता है, इस बात पे ध्यान दीजिए, मदद कर सकता है। दूसरा, पहला पीला दूध नहीं फेंकना है और पहले 6 महीने बच्चा केवल माँ का दूध पिएगा और माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ना है।
0: और एक छठा संकल्प भी जोड़ लीजिए भाई, बच्चे के जन्म के बाद दिए जाने वाले सभी जन्म खुराक टीके समय पर लगवाएंगे और आगे का पूरा टीकाकरण कैलेंडर भी पूरा करवाएंगे।
2: सही कहा आपने सेहतिया जी, माँ का दूध, समय पर टीकाकरण और दोनों मिलकर बच्चे को जीवन में सुरक्षित शुरुआत दे सकते हैं।
1: बहुत ही गहरी बात की है आप दोनों ने, बच्चे के जीवन का पहला घंटा पूरे जीवन पर असर डाल सकता है। माँ का दूध, माँ पिता का स्पर्श, परिवार का सहयोग और समय पर स्वास्थ्य सेवा, यही बच्चे की मजबूत शुरुआत है।
0: और दोस्तों मैं एक बात और कहूँगा, अगर स्तनपान में दिक्कत हो तो शर्म या डर की जरूरत नहीं, स्वास्थ्य कर्मी से सहायता लें और ये सीखने की एक अच्छी सरल प्रक्रिया है जो वो आपको बता रहे हैं।
2: बिल्कुल, माँ को ताना नहीं सहारा चाहिए, बच्चे को घुट्टी नहीं माँ का दूध चाहिए, परिवार को अफवाह नहीं सही जानकारी चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा टीकन भाभी आपने। तो साथियों आज की 5 जरूरी बातें याद रखिए। पहली, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने की कोशिश करें। दूसरी, पहला पीला दूध बच्चे को दें, उसे फेंके नहीं। तीसरी, पहले 6 महीने केवल माँ का दूध दें। चौथी, त्वचा से त्वचा संपर्क बच्चे को गर्माहट और सुरक्षा देता है। पांचवी, पिता और परिवार की भूमिका बहुत जरूरी है।
2: और छठी बात आप कहना भूल गए आरजे बाबू, खतरे के संकेत दिखें तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं, इंतजार ना करें।
1: बिल्कुल टीकन भाभी, इसी संदेश के साथ आज का सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है, लेकिन हमारे जो सुनने वाले हैं वो याद रखें, बच्चे की अच्छी शुरुआत महंगे साधनों से नहीं, सही जानकारी और सही देखभाल से होती है। लेकिन श्रोताओं, कार्यक्रम को संपन्न करने से पहले यानी समाप्त करने से पहले हम सब मिलकर लेंगे सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
2: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
2: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत सही तो लाभ कई। पहला दूध, पहला प्यार, पहला घंटा जीवन का आधार, माँ का साथ, पिता का हाथ, बच्चे को मिले सुरक्षित शुरुआत, सेहत सही लाभ कई।

0: तो साथियों, अब समय हो चला है कि कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही को यहीं पर संपन्न किया जाए, लेकिन अगले एपिसोड में फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: बिना छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक

ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखे, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाई

गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान। किसान मित्रों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आप अपनी जो खेती है वो आधुनिक तरीके से करें। परंपरागत तरीके से आप खेती करते हैं तो उसमें पैदावार कम होती है, लेकिन आज के जो आधुनिक तरीके हैं अगर उनका इस्तेमाल हम खेती में करते हैं तो हम अच्छी खासी आमदनी खेती से ले सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि केवल खेती पर ही आप निर्भर ना रहें, उसके साथ और भी काम करते रहें, जैसे कि मुर्गी पालन है, मछली पालन है, आपका जैविक खाद बनाने का प्लांट है, मधुमक्खी पालन है, और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको आप खेती के साथ साथ कर सकते हैं, साथ ही साथ औरों को भी रोजगार दे सकते हैं। और इस तरह से जब आप खेती करते हैं तो जरूर आपको खेती से लाभ होता है। और पशुपालन तो हमारे हर किसान भाई को करना ही चाहिए, क्योंकि खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक होते हैं। हमारे जो पशु हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ मिलता रहता है, चाहे हम दूध की बात करें, और उनका जो गोबर होता है वो तो इतनी अच्छी खाद उसकी बनती है कि उसका इस्तेमाल हम खेतों में करते हैं तो बहुत अच्छी फसल हमें मिलती है। और साथ ही साथ जो हमारे घर में जब हम आटा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी भूसी बचती है, सब्जियां लेके आते हैं तो उसके अवशेष बचते हैं, जब कभी हमारे घरों में खाना ज्यादा बन जाता है, रोटियां ज्यादा बन जाती हैं तो उनको पशु खा लेते हैं। तो किसान मित्रों, ये जो तालमेल है खेती का और पशुपालन का, ये यूं ही चलते रहना चाहिए, तभी आप खेती से लाभ ले सकते हैं। और अब बात आती है किसान मित्रों कि जब आप खेती करते हैं तो बहुत सा समय आपके पास बचता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस समय का उपयोग कहाँ पे करें। वैसे आप अपने खाली समय का उपयोग मुर्गी पालन करके कर सकते हैं, साथ ही जो हमारे घरों की महिलाएं हैं और बच्चे हैं वो भी अपने खाली समय में इस धंधे को आराम से करके अच्छी आमदनी कर सकते हैं। घर में अगर मुर्गियां पाली जाएं तो उनके रख रखाव और खुराक पर अधिक खर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि घर का बचा कुचा भोजन, सब्जी के बेकार पत्ते और अनाज के बचावन से उनके लिए अच्छा भोजन प्राप्त हो सकता है, और उसके बदले आपको मुर्गियों से उत्पाद प्राप्त होता रहता है। किसान मित्रों, मुर्गियों की उचित देखभाल, संतुलित आहार, साफ सफाई और हवादार घर और अच्छी नस्ल का चुनाव करने से रोग की संभावना कम होती है। और किसान मित्रों, आपको याद ये रखना है कि शुरू से ही मुर्गियों में रोग निरोधक उपायों का अमल करना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होता है, क्योंकि संक्रामक रोग हो जाने पर मुर्गियों को बचाना कठिन होता है। मुर्गी के बीमार पड़ते ही उसे स्वस्थ मुर्गियों के झुंड से अलग कर देना चाहिए और पशु चिकित्सक से सलाह लेकर ही चिकित्सा करनी चाहिए। और जो व्यक्ति बीमार मुर्गियों की देखभाल करे उसे स्वस्थ मुर्गियों के पास जाने से पहले कपड़े बदल लेने चाहिए, और ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिन्हें वो आसानी से धो सके या फेंक सके। हाथों को कीटाणुनाशक दवाओं से धो लेना चाहिए। जिस घर में बीमार मुर्गी रह चुकी हो उसमें नई मुर्गियां रखने से पहले चूना से पुताई करवा देनी चाहिए, साथ ही समय समय पर DDT आदि का छिड़काव भी करते रहना चाहिए। इस तरह से किसान मित्रों, आप खेती के साथ साथ मुर्गी पालन करके अच्छी आमदनी कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही मुर्गी पालन की, और अब आप सोच रहे होंगे अपने मनोरंजन की, तो आइए सुनवाते हैं आपको एक उपदेश। कलाकार हैं प्रियंका चौधरी।

तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे प्रियंका चौधरी से ये उपदेश। किसान मित्रों, खेती से बढ़िया उत्पादन के लिए खेत की मिट्टी की जांच बहुत जरूरी होती है। इसका मुख्य उद्देश्य खेत की जरूरत के अनुसार उसे पोषक तत्व उपलब्ध करवाना है, जिससे उत्पादन बढ़े और खेती में लागत कम आए। किसान मित्रों, देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न उत्पादन की मांग को पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इसके लिए मिट्टी का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। पौधे के विकास के लिए कुल 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अधिक पैदावार और लाभ लेने के लिए उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग आवश्यक है और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करने के लिए मिट्टी का परीक्षण करवाना बहुत आवश्यक है। तभी हमें पता चलता है कि मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है और किस पोषक तत्व की अधिकता है। इसीलिए किसान मित्रों, आप अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाएं और उसी के अनुसार उर्वरकों का संतुलित तरीके से प्रयोग करें, क्योंकि मिट्टी की गुणवत्ता यदि अच्छी होती है तो हमारी फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, जिसके लिए जरूरी है कि समय समय पर मिट्टी की जांच की जाए। जैसे स्वस्थ शरीर के लिए अच्छा खान पान होना बहुत जरूरी है, उसी प्रकार पौधों की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए संतुलित पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। किसी भी फसल से उन्नत पैदावार के लिए ये जरूरी है कि उस फसल को किस प्रकार की भूमि में उगाया जा रहा है और उस भूमि में किस प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हैं, जो कि मिट्टी जांच से पता चल जाता है, और उस भूमि में किस प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हैं, जो कि मिट्टी की जांच से पता चल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके खेतों से भरपूर पैदावार हो और आपकी खेती में जो लागत है वो कम आए, तो आप अपने खेतों की मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाएं। अब बात आती है कि मिट्टी की जांच कहाँ पे करवाएं, तो आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र जा सकते हैं मिट्टी का सैंपल लेकर के, और वहां पर आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा सकते हैं और उसके बाद फिर फसल के हिसाब से खाद का प्रबंधन करके अच्छी आमदनी खेती से ले सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना कि मिट्टी की जांच का कितना बड़ा महत्व है खेतों से अच्छी पैदावार लेने के लिए। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं रविंद्र खालौर और लोकेंद्र सिंह। किस्सा रहेगा श्रवण कुमार का। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रविंद्र खालोर और लोकेंद्र से ये रागनी, किस्सा था श्रवण कुमार का। किसान मित्रों, मिट्टी में लगातार रसायनों के छिड़काव और रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती मांग ने पर्यावरण को प्रदूषित करने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी घटा दिया है। इन रसायनों के प्रभाव से मिट्टी को उर्वरकता प्रदान करने वाले सूक्ष्म जीवों की संख्या में बहुत कमी हो गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब खेतों में रासायनिक उर्वरकों की जगह जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करके इस कमी को पूरा किया जा सकता है। जैव उर्वरक विभिन्न प्रकार के मिट्टी जनित रोगों के नियंत्रण में सहायक सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त जैव उर्वरकों से किसी भी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं फैलता और इसका कोई दुष्परिणाम भी देखने में नहीं आया है और ना ही इसका प्रयोग करने वालों पर इनका कोई दुष्प्रभाव देखा गया है। जैव उर्वरकों के उपयोग करने से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता में कमी देखी जा सकती है। पिछले कुछ दशकों से हमारे बहुत से किसान बहन भाइयों द्वारा जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है। किसान मित्रों, आपको बता दें कि फसलों में जैव उर्वरकों के इस्तेमाल करने से वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन पौधों को सुगमता से उपलब्ध होती है और हमारे खेत की मिट्टी में पहले से मौजूद अघुलनशील फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व घुलनशील अवस्था में परिवर्तित होकर पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। क्योंकि जीवाणु प्राकृतिक हैं, इसलिए इनके प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और पर्यावरण पर विपरीत असर नहीं पड़ता। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही जैव उर्वरकों के उपयोग की, और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं महेश बपरौली और किस्सा रहेगा पृथ्वी सिंह किरणमयी का। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे महेश बपरौली से ये रागनी, किस्सा था पृथ्वी सिंह किरणमयी का। और अब किसान मित्रों, समय हो चला है आप

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है। इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जाँच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
5: हजारों साल नरगिस अपनी बेलूरी पर रोई है। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज सत्यमान की सूरत को देख करके सावित्री के अरमान खिले हुए थे। सोचने लगी कि जो मेरी कोशिश थी, जिस तस्वीर की मुझे तलाश थी, आज वो मुझे मिल गई। मेहरबानों, सावित्री का मन, सावित्री की निगाह सत्यवान की शान शौकत से हट।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: आज जहां नजर घुमाओ वहीं मन चले दिख जाएंगे। घर से लेकर कॉलेज और ऑफिस तक, ऐसे में माँ बाप के द्वारा बढ़ती सख्ती लड़कियों के दिल में और डर डाल देती है। ऐसे वो आगे नहीं बढ़ पाती, मनचले बहके कदमों की तलाश में रहते हैं। ऐसे में हमें बचकर रहना होगा, हमारी एक लापरवाही हमें मुश्किल में डाल सकती है। खासकर किशोरी उम्र में अगर देखा जाए तो ये उम्र नई चीज़ों को समझने और सीखने की होती है, पर हम ये नहीं नज़रअंदाज कर सकते हैं कि इस उम्र में ही कदम सबसे ज़्यादा बहकते हैं। और जब बात इंटरनेट की आती है तो लोग सही और गलत को समझ नहीं पाते, क्योंकि ऐसे में जो अच्छा लगता है वही सही लगता है। कई बार लोग ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते हैं। चैटिंग ऐप्स से लेकर डेटिंग ऐप्स तक मनचले अपनी नज़र रखे रहते हैं। ऐसे में हमें समझना होगा कि इंटरनेट विकास के उपयोग के लिए है, ना कि जाल बिछाने के लिए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि डिजिटल इंडिया अपराधियों के लिए एक सॉफ्ट टारगेट बन सकता है, क्योंकि देश में वर्ष 2019 में साइबर अपराध के मामलों में भारी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। NCRB के आंकड़ों में बताया गया है कि 2019 में साइबर अपराधों में 4,45,046 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2018 में ये 28,02,048 था। ये सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरनेट का कैसे दुरुपयोग हो रहा है। और किशोर उम्र में ये सब बातें अच्छी लगती हैं, क्योंकि इनके लिए सब कुछ नया होता है। इंटरनेट में ऐसे नए अनजान लोगों को दोस्त बनाना, उनसे अपनी पर्सनल डिटेल साझा करना, ऐसी नादानियां होना आम बात है। हर जगह सोशल मीडिया में अपनी अपडेट्स डालना, इन्हीं सब चीज़ों की तलाश होती है मनचलों को। इसीलिए हमें बच्चों को इंटरनेट के दोनों पहलू समझाना चाहिए। अगर हम अपनी नज़र घुमाएं तो हमारे आसपास ही ऐसे मनचले दिख जाएंगे जो सिर्फ अपने शिकार की तलाश में रहते हैं। ऐसे में किशोरों को हर अच्छी लगने वाली चीज़ सही लगती है, तो उन्हें हर चीज़ के दोनों पहलू समझना ज़रूरी है, क्योंकि वो कुछ भी करने से कम सोचेंगे। उनको समझना बेशक आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन उनको कम से कम पता होगा कि वो किस राह में चल रहे हैं। कई बार उनको पता ही नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। रिश्तेदारों ने छेड़खानी की या प्यार था उनका, किसी ये बात साझा करें। वैसे तो माँ बाप को ऐसी समझ बनानी चाहिए अपने और अपने बच्चों के बीच कि बच्चे उनको अपना दोस्त मान लें। कुछ भी सलाह या मन की बात करनी हो तो उनसे ही वो सबसे पहले करें। भारत में 86% यौन उत्पीड़न परिवार के सदस्यों जैसे भाई और चाचा, साथ ही पड़ोसी, नियोक्ता, सहकार्यकर्ता और दोस्तों द्वारा किया जाता है। 14,102 यानी 38% बलात्कार पीड़ितों की उम्र 18 वर्ष से कम थी। ऐसे में आपका अपने बच्चों के साथ कैसी समझ होनी चाहिए, आइए इस कविता द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यूं कभी अकेले मत सहना अपने आंसुओं को, यूं कभी अकेले मत सहना अपने आंसुओं को, क्योंकि हम नहीं अनजान हैं। पूछ ले सवाल जो तेरे दिल में है, पूछ ले सवाल जो तेरे दिल में है, क्योंकि तेरे पीछे खड़े हैं हम। बता दे जो तेरे दिल में है, क्योंकि तेरे हमदर्द हैं हम। डांट खाने वाली अब तेरी उम्र नहीं, डांट खाने वाली अब तेरी उम्र नहीं। समझने वाला ये वक्त है आया, मुझे तू अपना दोस्त बना ले मेरे बच्चे। देख तेरे लिए मैं फ्रेंडशिप बैंड भी लाया। इस कविता के माध्यम से हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक माता पिता को किस प्रकार से अपनी कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों के दोस्त बन जाएं, ताकि वो बच्चे अपने माता पिता से हर एक बात साझा करें। अब चलिए सुनते हैं कुछ बहके कदमों की कहानियाँ। निखिल जो हर लड़की को अपनी प्रॉपर्टी समझता है, चलिए उनकी जिंदगी को थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं।
3: अरे यार राज, सड़क पर आज कोई फूल झड़े नजर नहीं आ रही।
2: हाँ यार निखिल, आज तो कोई दिख ही नहीं रहा।
3: यार एक बात बता, क्यों ना हम ऐसे कर लेते हैं कि सड़क के लेफ्ट में जो लड़की जाएगी वो मेरी और राइट में जो जाएगी वो तेरी।
2: चल ठीक है, पर अगर कोई लड़की गुस्सा करेगी तो?
3: अरे यार ये लड़कियाँ हमारे लिए है ना, और हमारी नहीं होंगी तो किसकी होंगी।
2: चल ठीक है, बस इतना हंसने की कोशिश मत कर, इतना बता दे लड़कियाँ कहाँ दिख रही हैं यार।
3: देख देख देख देख देख, आई तो सही।
2: अरे हाँ वो रही।
3: अरे अंधे, अरे देख तो सही, मैं क्या कह रहा हूँ, लेफ्ट वाली रोड में नहीं, राइट वाली में।
2: यार निखिल देख, उसे तू कुछ मत कहियो।
3: क्यों?
2: क्योंकि वो मेरी बहन है यार।
3: यार राज देख, डील तो पहले ही तय हो गई है। तूने ये कहा था कि जो राइट साइड से लड़की आएगी वो मेरी होगी।
2: पर यार निखिल वो मेरी बहन है।
3: देख मुझे कुछ नहीं पता, तूने तो पहले ही शर्त लगाया था, और अगर तेरी बहन की जगह मेरी बहन होती तो मैं खुशी खुशी हाँ कर देता।
2: हाँ ठीक है ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। आगे क्या हुआ इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं, लेकिन क्या इससे भी बड़े मनचले हो सकते हैं? चलिए आइए इस दूसरी कहानी से समझने की कोशिश करते हैं।
4: अरे भाई अमित, तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है यार?
2: और नहीं तो क्या करूं यार, उस सोनिया ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए ठुकराया ही नहीं, हमेशा हमेशा के लिए मना भी कर दिया यार।
4: अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत कि तुझे मना कर दे?
2: और नहीं तो क्या, उसने मुझे थप्पड़ भी मारा यार, सबके सामने बीच सड़क पर।
4: क्या? और तू अभी तक हाथ पर हाथ रखे बैठा है अपनी इंसल्ट करवा के?
2: मैं तेरी जगह होता तो अभी तक उसे सबक सिखा चुका होता। यार मन तो मेरा भी करता है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसे किस तरह से करूं और क्या करूं ऐसा कि जिंदगी भर याद रखे।
5: मनचले किसी भी रूप में आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हर बार अनजान ही हो, कई बार रिश्तेदार और टीचर्स भी हो सकते हैं। और यह भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ किशोरी उम्र के ही मनचले होते हैं, कई बार देखा गया है बड़े बूढ़े भी ऐसी तुच्छ हरकतें करते पाए गए हैं। ऐसे में परवरिश का एक बड़ा रोल है। समाज में पल रहे पनप रहे इस सोच को खत्म करने के लिए आइए बात करते हैं इस टॉपिक पर।
6: नमस्कार, मैं हूँ साकिब शेख और आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM। और आपने दो ऐसे नाटक सुना जो ऑडियो नाटक था, जिसमें आपने खास तौर से मनचलों की बातें सुनी और किस प्रकार से वो लड़कियों को टारगेट करते हैं, किस प्रकार से वो लड़कियों के लिए अपने प्लान बनाते हैं और फिर उनको उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो इस तरह की चीजें हमारे साथ अक्सर देखने को मिल जाती है, हमारे आस पास में, पड़ोस में, मोहल्ले में। और इसी बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि आज के समय में महिला के साथ लूट, छीना छपटी, छेड़छाड़, अपहरण, रेप आदि घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। महिलाएं सिर्फ घर से बाहर ही नहीं, अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो, नौकरी पेशा हो, महिला हो या हाउसवाइफ हो, हर जगह उन्हें अपनी सुरक्षा का खतरा बना ही रहता है। इसके साथ कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, और मार्केट में या ट्रेन में या ऑटो में या लिफ्ट में, गली मोहल्ले में मनचले या बदमाश लड़के को का जो छेड़छाड़ करना है वो जारी है। उन पर अश्लील कमेंट करना, अश्लील इशारे करना आदि रोजाना की लगभग आम बात सी हो गई है। बहुत सी लड़कियां रोज इन बदतमीजियों से तंग आकर या तो घर से बाहर निकलना ही बंद कर देती हैं या फिर डर कर कुछ कह नहीं पाती हैं, जिसे
2: ऐसे लोगों का हौसला और बढ़ता है, हौसला बुलंद होता है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में फोन के माध्यम से अंजना जी हैं, जो कि रूम टू रीड की प्रोग्राम एसोसिएट है। मैम बहुत बहुत स्वागत है।
7: थैंक यू सर।
2: हम आपको बता दें कि आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब आप सड़क पर हो, रास्ते पर हो, पैदल चल रही हो, तो किस प्रकार से अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, हेडफोन इस्तेमाल करते समय किस प्रकार से समझदारी बरतें, आने जाने वाले रास्ते का चुनाव किस प्रकार से करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कैसे करें, जब आप लिफ्ट में किसी अजनबी के साथ अकेले हो तो क्या करें, और जब आप अकेले या रात में टैक्सी या ऑटो का सफर कर रहे हो तो क्या करें, जब कोई आपका पीछा करे तो क्या करें। तो इसका क्या इलाज है समझ नहीं आता, क्योंकि हमारी परवरिश में कहीं ना कहीं खोट है।
7: ये बहुत एक देखिए बहुत सामान्य सी बातें कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि मन चले तो लोग, अगर आप किसी से भी बात करें तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा हमारे सोच के स्तर पर। तो हम क्या कह रहे हैं, लड़के तो ऐसे ही होते हैं। तो परिवार में देखें, घर में देखें, तो वो जो आप लड़कियों को तंग करते हैं उनको आपके पुरुषत्व से जोड़ा गया। अरे लड़के तो ऐसे ही होता है। अगर किसी लड़की को छेड़ दिया और लड़की ने को अगर उसने परेशान कर दिया तो उसकी कॉलर दूसरे लड़कों के बीच में भी खड़ी हो जाती है। तो एक तो इसका जो है हम कैसे इसका स्पेसिंग हो जाता है, मन चले शब्द का जो जितना एक कहना चाहिए ग्रीवियस या फिर जिस तरीके से इसका प्रभाव है हम उस तरीके से इसको देखते नहीं है। तो हम सामाजिक तौर पे मान के चलते हैं कि लड़के तो मनचले होते ही हैं और इसको हम कुछ नहीं कर सकते, और तुम लड़की हो तो तुम्हें ही सब कुछ की जिम्मेदारी तुम पे है। तो अगर तुम्हें लड़का छेड़ रहा है तो तुम्हें ही कोई कमी होगी। लड़का अगर तुम्हें परेशान कर रहा है या फिर वो कुछ भी बोले जा रहा है, चाहे वो पब्लिक प्लेस ही क्यों नहीं हो, तो गलती लड़की की होगी। तो सबसे पहले तो हमें लगता है कि इस चीज को समझने के लिए मतलब हमें पेरेंट्स को समझना चाहिए कि इस शब्द को इतने हल्के से ना ले। अगर आपका लड़का है तो उसकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको भी समझाना चाहिए कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। कि कितनी बार क्या होता है ना कि वो लड़के भी अनजाने में करते हैं, उन्हें भी ये नहीं पता होता है कि इसका प्रभाव जिसको आप छेड़ रहे हैं उसके ऊपर किस तरीके से पड़ रहा है
2: जी।
7: और आप उसको अपने जो क्षणिक खुशी होती है या पुरुषत्व होता है उससे जोड़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि हम इस परिस्थिति में कि लड़के ही लड़की को छेड़ते हैं या

0: लड़कियां भी कभी कभी ऐसा आता है कि जगह होती है जहां पे लड़कियों का वर्चस्व होता है, तो देखा गया कभी कभी ऐसे होते हैं कि लड़कियों ने छेड़ दिया, विच इज वेरी रेयर, बट लोग बोलते हैं। तो हमें इस कल्चर को समझना चाहिए और इस पे उनका सेंसिटाइज करना चाहिए।
1: बिल्कुल आपने कहा ना, आपने बिल्कुल ये कहा कि जो हमारे अंदर ये मेंटेलिटी हमारे समाज की बन गई है कि अक्सर लड़की ही गलत होती है और लड़की को सबमिसिव होना चाहिए।
0: तो तुम ऐसे नहीं बैठो, तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो, तुमने दुपट्टा नहीं ओढ़ा इसलिए लड़के छेड़ रहे,
1: हाँ तुम्हारे कपड़े छोटे थे इसलिए छेड़ रहे,
0: तुम जींस पहनोगे तो होगा ही यही तुम्हारे साथ। तो खास करके ये जो एडोलेसेंट एज है, किशोरावस्था में इस तरह की पाबंदियां जो है वो लड़कियों पे बढ़ती जा रही है और इसी तरीके का फ्रीडम जो है लड़कियों को मिलता चला जाता है। रूम टू रीड अगर मैं संस्था की बात करूं तो हम लोग लाइफ स्किल पे काम करते हैं और इसीलिए हम बोलते हैं लाइफ स्किल कितना महत्वपूर्ण है एक एडोलेसेंट उम्र के लड़के और लड़कियों को समझने की, कि आपको उस चीज के लिए आपको जागरूक करता है, आपको सेंसिटाइज करता है और आपको ये देखने का मौका देता है कि आपकी हरकत दूसरी जो आपका काउंटर पार्ट है जिसको आपने छेड़ा उनके मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ा, उनको सामाजिक पाबंदी किस तरीके से लगाई गई और परिवार के अंदर में भी किस तरीके से रोक टोक शुरू हो गई, ये तो एक है। दूसरी तरफ देखिए जो मनचला लड़का है उसको देखिए, उनके लिए भी बहुत आसान नहीं है। आप छेड़ने लगे, आप उस छेड़ने के विशेष साइकिल में जा रहे हैं तो आपका सेंसिटाइजेशन लो हो रहा है, तो आपके एक सामने वाला जिसको आप छेड़ रहे हैं या जो दुखी हो रहा है उससे आपको क्या हो रहा है, प्लेजर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप निगेटिव प्लेजर लेने लग गए, ये एक बात है। दूसरी बात क्या है, जो कंस्ट्रक्टिव एनर्जी लगना चाहिए वो आपका डाइवर्ट हो गया और डिस्ट्रक्टिव माहौल में चला गया, एनर्जी की तरफ चला गया, तो कहीं ना कहीं उस उम्र में अगर आपका पढ़ाई आपकी अलग जो क्रिएटिविटी होनी चाहिए वो पीछे रह जा रही है और आप इस तरह की हरकतों में बढ़ते चले जा रहे हैं जिस वक्त में माता पिता बिल्कुल एहसास तक नहीं करते हैं।
1: सही
0: और जब उनको पता चलता है तो पता चलता है कि लड़का जो है या लड़की जो है वो तो जितनी वो सोचती थी समस्या उससे कहीं ज्यादा हो गई है, जितनी नहीं होनी चाहिए थी, और तब उनको लगता है कि मैंने तो तुम्हें सारी सुविधाएं दी, मैं तुमको रोकी नहीं, मैं तुमको कहीं जाने से रोकी, मैंने पढ़ने की सारी सुविधाएं मुहैया कराई और फिर भी जो है तुमने ऐसा किया। ये लड़का ने नहीं किया या लड़की पे जो आपने पाबंदी लगाया इन लड़की ने नहीं किया, ये पेरेंट्स के नेग्लिजेंस ने किया या पेरेंट्स के लैक ऑफ अवेयरनेस ने किया। तो इस परिस्थिति में तीनों का अवेयरनेस बहुत जरूरी है, माता पिता का भी होना बहुत जरूरी है और लड़का व लड़की उनका भी अवेयरनेस, उनका भी सेंसिटाइजेशन होना जरूरी है, तभी ये मनचले शब्द को भी हम जो है बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव में समझ पाएंगे।
1: जाहिर सी बात है, और हमने तो मनचले शब्द को समझ ही लिया है और साथ में हमने ये भी कॉन्सेप्ट जान लिया कि जो ये अवधारणा है हमारे और हमारे आसपास रहने वाले समाज में जो पेरेंट्स हैं उनको बदलनी होगी और अपने बेटों को सीख देनी होगी। अब हम ये बात करेंगे कि अगर इस तरह से हो जाए, क्योंकि अभी तो हमारा समाज इतना डेवलप नहीं है, तो लड़कियां किस प्रकार से अपना प्रिकॉशन ले सकती हैं, जब आप सड़क पे चलें, रास्ते में चलें, पैदल चल रही हो तो क्या करें?
0: जी पहले तो जब वहां पे आते हैं ना तो सबसे पहले एक चीज है जो हमें समझने की जरूरत होगी, लड़की अगर रास्ते में आप चल रही है और आपका कोई पीछा कर रहा है तो इसमें एक बात जो हमें मुझे जो पर्सनली लगता है वो ये लगता है कि इसमें दो तरीके की परिस्थिति होती है, पहले तो जो आपको छेड़ रहा है या रास्ते में आपके पीछे जा रहा है तो आप पहले उसको श्योर हो जाइए कि सही में जो बंदा है वो छेड़ रहा है। कभी कभी क्या होता है लड़की थोड़ा घबरा जाती है, एक्सपोजर का अभाव है या वो एक घर में डांट पड़ेगी लड़का तुमको छेड़ता है, तो अगर नहीं भी छेड़ता है वो जस्ट इमेजिन करती है, क्योंकि इसमें ना मीडिया का भी बड़ा रोल है, आप फिल्मों में देखे सीरियल में देखे तो छेड़ने वाले लड़के का ना एक अलग टाइप दिखा दिया जाता है
1: जी।
0: तो अब अगर उस तरीके के लड़के या उस ड्रेसअप में लड़के आपको रोड पे दिखते हैं तो आप तुरंत सोचते हैं ये लड़का चेंगड़ा टाइप का होगा, मनचला है और ये छेड़ देगा मुझे, तो घबराहट में भी आप गलतियां कर जाती
1: है। एक्जेक्टली सही बात है।
0: तो सबसे जरूरी है इस जगह पे आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। आप रोड पे चल रही हैं तो आप कॉन्फिडेंट हैं, आप जो जहाँ जा रही हैं, जिस कपड़े में हैं, जिस तरीके से चल रही हैं, वो आपका निर्णय है और आप इसलिए उस पर कपड़े में हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को कम नहीं आके कि शायद मैंने आज जींस पहन लिया है, छोटा टॉप पहन लिया है, क्रॉप टॉप है, तो शायद मुझे लड़का इसलिए छेड़ रहा है और घर जाऊंगी तो मम्मी भी डांटेगी, तो घर से भी छुपा के मैंने पहना है। और ये तो आपका निर्णय है, आपने जो पहना है वो, या आप जिस जगह पे चल के जा रही हैं वो उस जगह के लिए आप खुद निर्णय लें कि वो जगह सही है, आप जो कर रही है वो सही है और आप उस पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, ये एक बात है। दूसरी बात है आप ऑब्जर्व करें थोड़े देर, मान लीजिए आप चल रही हैं और आपके पीछे पीछे कोई चल रहा है तो थोड़ा सा तेजी से चलने लगी, क्या वो बंदा भी तेजी से चलने लगा, रास्ते मुड़ जाइए, लेफ्ट हो जाइए अगर आप फ्रंट जा रही हैं, और अगर कोई बिजी वाला जगह, भीड़ भाड़ वाला जगह लेफ्ट में है या राइट में है तो आप उधर मुड़ जाइए और देखिए वो सामने वाला बंदा भी जा रहा है, अगर वो सही में आपको ऑब्जर्व कर रहा है या आपके ऊपर कोई कमेंट पास कर रहा है तो सबसे पहले यू स्टॉप, आप वहां पे रुकिए क्योंकि आप भीड़ वाले जगह पे पहुंच गई हैं। अगर शांत जगह में है उस जगह पे जाने की कोशिश करिए जहाँ भीड़ भाड़ है,
1: जहाँ पे लोगों का चहल पहल है,
0: लोगों का चहल पहल है, किसी दुकान पे रुक जाइए जैसे ग्रोसरी शॉप है, स्टेशनरी शॉप है, उस जगह पे सबसे पहले आप वहां पे भी कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये मेरे पीछे आ रहा है तो आपको वो सपोर्ट मिल जा सकता है, ट्रस्ट हो सकता है। कोई महिलाएं अगर मिल जा रही हैं, अगर आप पुरुष के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो किसी फीमेल का भी आप सपोर्ट ले सकती हैं। किसी तो ऐसा नहीं होता है कि सपोर्ट सिस्टम आपके पास नहीं होता है, तो सबसे पहले तो उस जगह पे जाइए। दूसरी बात है कि अगर वो सही में आप पे कमेंट पास कर रहा है या आपका पीछा कर, तो कॉन्फिडेंटली उसको फेस कीजिए और जहाँ हाँ आप वहाँ पे कहिए कि आप क्यों मेरे पीछे आ रहे हैं, आप जो बातें कर रहे हैं वो गलत है और उसको आप फेस कीजिए। वो चीज है, आप जितना भागेंगी, आप जितना छुपेंगी, आप जितना डरेंगी तो आपको उतना ज्यादा तंग किया जाएगा और वो आपके पीछे उतना दौड़ेगा।
1: मुझे तो लगता है कि हेडफोन का भी इस्तेमाल बहुत सोच समझ के उस वक्त करना चाहिए चलते समय। तो अभी तो हमने ये बात कर लिया कि आप सड़क या रास्ते पर चल रहे हैं तो क्या करें, हेडफोन का इस्तेमाल करें, किस तरह से करें, आने जाने वाले रास्तों का चुनाव कैसे करें। अब हम ये बात करेंगे कि अगर हम लिफ्ट में हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस तरह से समझदारी बरतनी है।
0: तो पहले तो पीछे वाले सिस्टम से ही आते हैं जो हम लोग बातचीत कर रहे थे और वहां पे आ गए कि पब्लिक प्लेस में आ गए, वहां से आप हेडफोन का अगर इस्तेमाल करें तो क्या हो रहा है कि आप बिल्कुल इग्नोरेंट हो रहे हैं, आपको दुनिया का कोई एहसास नहीं, अपना मोबाइल में लगे हुए दोस्तों से बात करते हुए चले जा रहे हैं तो आपके आसपास का आपको अवेयरनेस नहीं है, तो बेहोशी जो है वो आपकी समस्या का कारण बन सकता है। सेम वो हेडफोन अगर आप लिफ्ट में इस्तेमाल कर रही हैं, आप कहीं भी कर रही हैं, तो आप सबसे पहले अवेयर हो। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करें, पर पब्लिक पे जब आप चल रही हैं या बाहर हैं तो कोशिश करें कि हम इम्पोर्टेंट कॉल को ही लें और हम इसका इस्तेमाल नहीं करें। उसका सिर्फ ये कारण नहीं हो सकता कि कोई आपको छेड़ रहा है, आप लिफ्ट में अकेली हैं तो आपको आपको दिखेगा नहीं कि कोई आपको गलत नजर से देगा और आप अपनी दुनिया में व्यस्त है तो आपको नहीं, जब तक पता चलता है आपके लिए लेट हो जाता है या बहुत सारी दुर्घटनाएं भी होती हैं, तो एक तो उससे बचना चाहिए। दूसरी बात है अगर आप लिफ्ट में हैं तो आपके लिफ्ट में मिरर होता है तो आप 360 डिग्री जो है आप देख सकती हैं कि कौन है जो मेरे तरफ आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मुझे ही देखा है। लिफ्ट में अलार्म बटन होता है तो आप उसको प्रेस कर सकती हैं और आप ताकि जो गार्ड रूम होगा, कंट्रोल रूम होगा, वहां लोगों को पता चल जाएगा क्या परेशानी। तीसरी बात है जिस फ्लोर पे आप हैं तो अमूमन 10 सेकंड लगता है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में, अगर हाइट सर्टेन हाइट होता है तो एक मिनट का मामला है, आप इमीडिएट जो अपकमिंग फ्लोर है उस पे उतर जाइए, वहां से उतर करके आप स्टेयर से नीचे की तरफ आइए जो गार्ड रूम का जगह है, क्योंकि आप ऊपर की तरफ जाएंगे हो सकता है वही आइसोलेटेड एनवायरमेंट हो, तो वहां पे आ जाइए, नीचे की तरफ आ जाइए और उस जगह पे पब्लिक प्लेस में आकर के मतलब वहां पे अपनी चुप्पी को तोड़िए और वहां पे बोलिए कि आपको मदद की जरूरत है, हेल्प। ये जो होता है ना स्टॉप रन एंड हेल्प,
1: यस
0: हाँ, ये आपको करना चाहिए एंड दैट इज विथ योर कॉन्फिडेंस। अगेन मैं कहती हूँ कि हमें स्वयं को जानना बहुत जरूरी है और उसको हम समझते हुए आप अपने एक्शन को लें, घबराएं नहीं बिल्कुल।
1: सही बात है। और जब हम अगर ऑटो में सवारी कर रहे होते हैं, अकेले होते हैं तो या टैक्सी हो तो उस वक्त किस तरह से प्रिकॉशन लेना है।
0: जी बिल्कुल, ऑटो हो या टैक्सी हो, ये कि अमूमन प्रैक्टिस रखना चाहिए कि कितने नंबर का ऑटो से आप ट्रैवल कर रहे हैं। सामान्यतः क्या होता है ना, जब हमारे साथ कोई समस्या होती है, कोई हमें छेड़ देता है, और तब अगर हम पुलिस स्टेशन में या 100 नंबर पे कॉल करके या हेल्पलाइन पे हम कॉल करते हैं, तो हमसे यही पूछा जाता है कि ऑटो का नंबर क्या है, ड्राइवर का नाम क्या है। ड्राइवर के पास ना एक नंबर होता है उनका, नाम के साथ नेम प्लेट होता है। तो आप हमेशा इस चीज को ले, या टैक्सी में भी जाए, कहीं भी जा रहे हैं तो टैक्सी का नंबर, ड्राइवर का नाम और उनके आईडी कार्ड को जरूर देखें।
1: अच्छा, ताकि अगर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ कह रही थी आप।
0: हाँ, ताकि आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं, आप बिल्कुल क्लूनेस नहीं है। आप अगर ट्रेवल करें, आप अपना फोन नंबर या लोकेशन किसी और से भी शेयर कर लें फ्रेंड से।
1: बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये तो है ही। अब हम बात ये कर रहे थे कि जैसे सुरक्षा की चीजें अपने पास रखने की हो, या फिर पार्टी के दौरान सतर्क रहने की चीज हो, या होटल में किस प्रकार से चुनाव करें, कहीं जैसे बस से जा रहे हैं, दूर का रास्ता है और बस खराब हो गई, बीच में होटल लेना है, तो किस प्रकार से हम उसका चुनाव करें, इन चीजों का कैसे ध्यान रखें हम, या पार्टी के दौरान सतर्क रहने वाली बात हो।
0: बिल्कुल, एक तो देखिए सेफ्टी किट होता है, तो आप अपना सेल्फ सेफ्टी किट जरूर अपने साथ रखें। बहुत ऐसा नहीं है कि लाइफ जो है हमेशा निगेटिव है, बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एनी निगेटिव सर्कमस्टांसेस अगर हमारे लाइफ में आती है तो। तो बहुत सिंपल सी चीज है, चाबी का की होता है ना, किसी चीज की चाबी है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर उस तरीके है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि चिली स्प्रे होता है, उस तरीके की चीजों को यूज कर सकते हैं। तो ऐसे करके छोटी छोटी सेफ्टी की होती है, जैसे पेन है, पॉइंटेड है, पेंसिल है, जो आपके पर्स में होता है, होना चाहिए। तो आप उसका इस्तेमाल बहुत कठिन परिस्थिति में कर सकते हैं सेफ्टी की के लिए, पर उसके लिए आपको बहुत अवेयर होना होगा। आपका पर्स है, पर्स में अगर साइड में कोई ऐसा हार्ड मेटल को लटका के रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम लग रहा है, और आप उसको अगर सिर्फ फेंकती भी है तो अगर उस मेटल से चोट लगता है तो सामने वाला एक मिनट के लिए जरूर रुक जाएगा और आपके पास स्पेस मिल जाता है कि आप वहां से भाग सकती।
1: बिल्कुल,
0: तो ये है। रहा जब हम ट्रेवल करते हैं और होटल का चुनाव करना है या कहीं जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो ऑथेंटिक सोर्स को देखना चाहिए। ऑथेंटिक सोर्स मतलब ये होता है कि जैसे कि बहुत सारे रजिस्टर्ड ग्रुप ऑफ होटल्स होते हैं, है ना। तो आप अब ऑनलाइन का टाइम आ गया है और सुनो शारदा पे आप जो भी लिसनर हमारे सुन रहे हैं तो साइबर सेफ्टी को देख रहे होंगे, तो उसके लिए सुना होगा। तो उन सब चीजों में हम हमेशा बताते हैं कि अगर साइबर में भी साइबर अगर आप ऑनलाइन किसी चीज को सर्फ कर रहे हैं तो वहां पे देखें कि ऑथेंटिक सोर्स क्या है, गूगल की तरफ से क्या है, वो इन्फॉर्मेशन क्या है। तो वहां से एक होटल का डिटेल लें उस सिटी का, और अकॉर्डिंगली आप वहां पे संपर्क भी करें, और सेम डिटेल आप किसी ट्रस्टेड एडल्ट को भी शेयर कर सकती हैं कि आप उस जगह पे हैं और यहाँ तक हैं और आपके जरूरत पे आपकी मदद की जा सकती है। पर उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, अगेन, कि आप ये ना बार बार शेयर करें कि मैं अकेली हूँ,
1: अच्छा
0: मुझे अच्छा रूम दो क्योंकि मैं अकेले ठहरने वाली हूँ, या मैं शहर में अकेली हूँ।
1: ओके,
0: नो, यू आर हियर बट यू आर, मतलब आपके साथ और भी सारे लोग हैं, आप उस कॉन्फिडेंस के साथ रहें। या फिर कभी हेल्प भी लेना है तो कोई तंग कर रहा है और उसी होटल का सामने वाला बंदा कोई दिख रहा है, तो उतने ही फ्रेंडली तरीके से बात करें, कॉन्फिडेंस से बात करें कि हो सकता है वो बंदा आपकी हेल्प भी कर रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वो एकदम से वो अकेलापन का अनुभव लेकर के अकेले ना जाए,
1: ये भी हानिकारक हो सकता है।
0: जी बिल्कुल।
1: चलिए, तो अब हमने काफी सारी बातें कर ली हैं। एक छोटी सी बात ये भी करनी थी कि लास्ट में आप थोड़ा सा एक तो मैसेज दे दीजिए कि आज इस प्रोग्राम के तहत क्या मैसेज हमारे सुनो शारदा के माध्यम से हमारे श्रोताओं को देना चाहती हैं, और साथ ही साथ अगर इस राज्य की बात करें या अलग अलग जगहों की बात करें तो उनके लिए हम किस प्रकार से पुलिस से सहायता ले सकते हैं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साकिब, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक तो हमने बात की वो सेल्फ की बात करी, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट। उसके बाद थोड़ा सा हमने रखा सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस में क्या रखा, होटल कैसे ले, पब्लिक प्लेस पे जाना चाहिए, गाड़ी का नंबर रखना चाहिए, और इस तरीके की चीजें हमने बात। तो अभी हमने दो सेगमेंट को बहुत रखा कि अगर कहीं भी हैं तो सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, सोशल अवेयरनेस। अब जो तीसरी चीज है वो है सिस्टम की अवेयरनेस, मतलब सरकारी तंत्र है हमारी किसी भी परिस्थिति में हमारा मदद करने के लिए, राइट। तो जैसे 100 नंबर होता है, आपको इमीडिएट कुछ लगता है आप 100 नंबर पे कॉल कर सकती हैं। वुमन हेल्पलाइन नंबर होता है कि 181, जैसे सुनो शारदा है यूपी दिल्ली, इस जगह पे हमारे लिसनर सुन रहे हैं तो उस जगह पे 1090 पे हम कॉल कर सकते हैं जो महिला हेल्पलाइन है, और वहां पे आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। आप लोकेशन दे सकती हैं, आप कह सकती हैं मैं फलाने ऑटो में हूँ, एक नंबर भी आप दे सकती हैं, वो ट्रैक कर सकते हैं, लोकेशन और ऑटो नंबर जस्ट बोल सकते हैं। तो और सबसे बड़ी बात क्या है कि द मोमेंट आप फोन पे बात करेंगी, हेल्पलाइन पे बात करेंगे, जो आपका परपरेटर्स है मतलब जो तंग करने वाला व्यक्ति है, चाहे वो ऑटो वाला हो या कोई मनचला हो, वो तुरंत सतर्क हो जाएगा कि ये लड़की पुलिस को कॉल कर दी है। तो या तो वो अपने इंटेंशन को चेंज कर लेगा या आपके पास इतना समय मिल जाएगा कि आप उसको कह सकती हैं कि रुको और मैं आप एक्शन ले सकती हैं। तो स्टॉप एंड एक्शन के लिए आपके पास समय मिल जाता है, राइट। एक जो बहुत नंबर है जो महिलाओं को हमेशा अपने पर्स में रखना चाहिए, दिल्ली कमीशन ऑफ वुमन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमन है, ये नंबर है जैसे 269447544 है, दिल्ली कमीशन फॉर वुमन के लिए 2337057। तो ये सारे जो नंबर हैं उनको आप अपने पास रखिए ताकि विषम परिस्थिति में जहां पे आप बिल्कुल 100 नंबर को 181 को 1090 को एक्सेस नहीं कर पा रही है, ऐसा जो बहुत रेयर है, तो और आपके साथ कुछ दुर्घटना घट चुकी है, इन लोगों के साथ कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा और समय बहुत कम हो पा रहा है, तो आप पेरेंट्स जो है बिल्कुल कमीशन में शिकायत दर्ज करने से पीछे ना हटे। आप ये ना सोचे कि चलो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मैं अपनी बेटी के बारे में बोल दूंगी तो मेरी बेटी की बदनामी होगी। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि अगर आप इस कमीशन में अगर आप कॉल करते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जाएगा, ये एक बात है। दूसरी बात है कि लोग क्या कहेंगे के डर से आपने अपनी बेटी की तो क्षति कर ही दी, आप दूसरे की बेटियों को भी कहते हैं आप इसी परिस्थिति में जाओ। तो हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है पर कहीं ना कहीं जो इस तरीके से मंचलों का जो हरकत हो रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं, सिर्फ इस सोच के साथ कि हम अपनी बेटी तुम नहीं संभालोगे तो हम दूसरे के बेटा को क्या संभालेंगे। बहुत सामान्य सी बात है, हम मदर्स बोलती हैं हम अपनी बेटी को ना कंट्रोल कर सकते हैं, हम दूसरे के बेटे को कैसे करेंगे।
1: सही बात है,
0: क्यों नहीं करेंगे, हमारी बेटी भी है और दूसरे का बेटा भी किसी का बेटा है, कोई माँ बाप नहीं चाहते हैं कि बेटा बिगड़े या बेटी बिगड़े। उस सोच को पे चोट करने की जरूरत है।
1: सही बात है, तो ये था मैसेज
0: जी। उसके साथ मैं मैसेज पे आऊंगी, रूम टू रीड का रेडियो एपिसोड चलता रहता है, तो अगला एपिसोड हम लोगों का बुली पे भी आएगा, बुलिंग पे और कैसे बदले, गर्ल्स को बुली की समझ कैसे होनी चाहिए, तो उसको आप लोग जरूर सुनिए। और अगर उससे रिलेटेड कोई सा भी सवाल होता है तो सुनो शारदा के फोन पे हेल्पलाइन पे आप कॉल कीजिए और हम लोग आपके पास आंसर के साथ आएंगे।
1: बहुत बड़ी जानकारी,
0: यस,
1: बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन पे जोड़ने के लिए और बहुत सारी बातें की आपने। आशा करता हूँ कि आपकी दी गई जानकारी से हमारे श्रोता जो है वो लाभ उठाएंगे। आज हमने खासतौर से बात की जब आप सड़क या रास्ते पर पैदल चल रही हो तो किस तरह से प्रिकॉशन लेने हैं, हेडफोन्स का इस्तेमाल करते वक्त क्या करें, आने जाने वाले रास्तों का चुनाव कैसे करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कैसे करें, जब आप लिफ्ट में हो तो क्या करें, जब आप अकेले रात में टैक्सी या ऑटो ले रही हो तो क्या करें, जब कोई आपका पीछा कर रहा हो तो क्या करें, अलग अलग राज्यों में उनके अपने फोन नंबर्स हैं, उनको आप अपने पास रखें और सुरक्षा की चीजें अपने पास रखें, घबराई ना रहें, कॉन्फिडेंट रहें और पार्टी के दौरान सतर्क रहें, होटल में टिकने पर सावधानी बरतें। तो ये हमारे साथ आज साझा कर रही थी अंजना जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: Thank you very much.
1: तो श्रोताओं जाते जाते हमारी वो दो माध्यम नोट कर लीजिए जिसके जरिए से आप हमसे जुड़ते हैं और आप हमसे बातचीत करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। तो हमारा वो दो माध्यम है, एक तो फोन के जरिए से और दूसरा इंटरनेट के जरिए से। तो हमारा फोन नंबर है 01204060205 मींस 01204060205 और हमारा ईमेल एड्रेस है 90.8fm@sharda.ac.in। ईमेल एड्रेस एक बार फिर से सुनिए 90.8fm@sharda.ac.in। और अब इसके साथ ही अपने दोस्त अपने होस्ट साकिब शेख को दीजिए इजाजत, बने रहिए सुनो शारदा पर अपने अगले प्रोग्राम के लिए। नमस्कार,
2: सुनो शारदा।
3: दूर होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं,
2: चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा चंदन का चेहरा नजर नहीं आया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है गरिया।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-66-66 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो शारदा।

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। बात हेल्थ की में आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें, आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए। तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जानें। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, स्वागत है आप सबका। मैं विमलेश।
0: और मैं अजीत। नमस्कार श्रोताओ, प्रस्तुत है सुविचार जिसे हमें भेजा है रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा जी ने। आपने लिखा है,
2: जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है वो अपने जीवन के सारे लक्ष्य प्राप्त करता है। धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अब श्रोताओं के नाम।
0: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
0: और जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती।
2: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद अब्बासी जी, निगहत परवीन शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। और अब आपके लिए प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी प्यारी और लोकप्रिय श्रृंखला
0: ये भी जानिए।
2: तो अजीत जी, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम में सब्जियों का मौसम चल रहा है, तो आज की उमंग सब्जी मंडी में किस सब्जी की बात की जाए?
0: तो विमलेश जी, आज की उमंग सब्जी मंडी में हम बात करेंगे एक और बेहद लोकप्रिय और सबकी चहेती सब्जी भिंडी के बारे में।
2: इसका अंग्रेजी का प्रचलित नाम है लेडीज फिंगर, लेकिन इसका वानस्पतिक नाम है ओकरा। श्रोताओ, इस खेती का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है, ये भी मूल रूप से भारतीय सब्जी नहीं है।
0: क्योंकि भारत के प्राचीन से प्राचीन साहित्य में भी इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता।
2: आपको बता दें कि भिंडी की उत्पत्ति का मूल स्थान अफ्रीका माना जाता है, विशेष रूप से पश्चिमी अफ्रीका, इथियोपिया और नील नदी की घाटी के क्षेत्र में। कुछ विद्वान मानते हैं कि भिंडी पहले एक जंगली पौधा था, जिसका उपयोग औषधि के रूप में ज्यादा और भोजन के रूप में कम होता था।
0: लेकिन धीरे धीरे ये भोजन के मुख्य व्यंजन के रूप में स्वीकार्य हो गया।
2: जी,
0: प्राचीन मिस्र और पिरामिड के अभिलेखों में भिंडी के उपयोग के लिखित प्रमाण मिलते हैं।
2: जी हाँ, भिंडी का महत्व प्राचीन मिस्र में इतना अधिक था कि किसी भी राजसी भोज में मुख्य रूप से पहले तली हुई भिंडी विशेष रूप से परोसी जाती थी।
0: जी, भिंडी का आगमन भारत में 1000 से 1500 ईसा पूर्व आसपास हुआ। संभवतः ऐसा माना जाता है कि ये अरब के व्यापारियों और प्राचीन समुद्री मार्गों के जरिए हुआ।
2: जी, भिंडी को उत्तर प्रदेश और बिहार में राम तोरई,
0: छत्तीसगढ़ में रामकेलिया
2: और महाराष्ट्र में भिंडी,
0: गुजरात में भिंडा,
2: फारसी में वामिया कहते हैं।
0: जो भी हो, मूल रूप से भिंडी भारत की हो या न हो,
2: सबसे मजे की बात यह है कि आज भारत भिंडी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यहाँ दुनिया भर में सबसे अधिक भिंडी खाई जाती है।
0: और श्रोताओं, अब भिंडी की वैज्ञानिक जानकारी। भिंडी का वैज्ञानिक नाम है ओकरा और भिंडी को भी फल माना गया है।
2: तो अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है,
0: भिंडी का भारत में आगमन किनके द्वारा हुआ और यह मूल रूप से कहाँ की पैदावार है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: भिंडी का भारत में आगमन किनके द्वारा हुआ और ये मूल रूप से कहाँ की पैदावार है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर।
2: हमारा ईमेल भी याद रखिए, पता है audio@cit.nic.in।
0: हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी। आइए अब सुनते हैं एक मनोरंजक विज्ञान गीत।
2: शीर्षक है छई छपाक छई।
3: कपड़ों की साबुन से धुलाई होते देख बचपन में एक प्रश्न अक्सर मेरे दिमाग में कौंधता था। हो सकता है ऐसा ही प्रश्न आपके मन में भी उठता हो, और वो प्रश्न है, आखिर साबुन में ऐसा क्या है जो कपड़ों पर लगे मैल और तेलीय दाग को साफ कर देता है? तो आइए लिए चलते हैं आपको इसके उत्तर की ओर एक अनोखे अंदाज में।

साबुन के अणुओं का दाग पर हमला, रस्सा कशी के खेल सा हुआ कपड़े और साबुन में झगड़ा।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है।
1: और अब प्रस्तुत है हमारा आज का अंतिम

0: कार्यक्रम जो बता रहा है हमें एक अनोखी दोस्ती के बारे में। ये दोस्ती है हाथी और भंवरे की।
1: जी, और सुनते हैं और जानते हैं कैसी है ये दोस्ती और कैसे अनूठी बन गई ये दोस्ती।

भूं भूं एक नन्हा भंवरा था जिसे कमल के फूलों का रस बहुत पसंद था। उसकी बात सुनकर सभी भंवरों के मुंह में पानी आ गया और सब उड़ चले झील की ओर।

0: झील में दूर दूर तक कमल के बड़े बड़े फूल थे।
1: अरे वाह, यहाँ तो कितने सारे फूल हैं। सबसे पहले सबसे बड़े फूल पर बैठ जाता हूँ। कितना मीठा है, आज तो जमकर रस पीऊंगा।
0: सारे भंवरे वहीं आ गए।

0: मगर ये क्या, भूभू तो अभी तक रस पीने में मस्त था। मजा आ रहा है, कितना मीठा रस है। रस पीकर भूभू को मजा तो आया, पर अब उसे नींद आने लगी। भूभू खर्राटे लेकर सो गया। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, फूल बंद होने लगा। भूभू मीठे मीठे रस को पीकर इतनी मीठी नींद सोया कि उसे पता ही नहीं चला कि फूल कब बंद हो गया। थोड़ी देर बाद भूभू जागा और आंखें खोली तो,
1: अरे ये क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? कोई है? कोई है? कोई है?
0: उसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, घना अंधेरा था। भूभू डर गया।
1: सब मुझे अकेला छोड़कर कैसे चले गए? मैं फंस गया। अब क्या करूं? कोई मुझे बाहर निकालो, कोई बाहर निकालो।
0: अब वो करे भी तो क्या, ये फूल तो तभी खुलेगा जब सवेरा होगा। भूभू लगातार रो रहा था। तभी उस झील में नहाने हाथियों का झुंड आ पहुंचा।

0: सभी नहाने के लिए झील में उतरे और उतरते ही धमा चौकड़ी मचाने लगे। हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर दूर जमीन पर फेंकते तो कभी पानी में डुबकी लगा देते। उन्होंने कमल के फूलों को भी नहीं छोड़ा। एक हाथी ने कमल का फूल तोड़ा और उसे नदी के बाहर फेंक दिया। ये तो वही फूल है जिसमें फूफू बंद है। घना अंधेरा था। हाथियों का झुंड भी खूब मस्ती करने के बाद वापस जाने लगा। लेकिन बेचारा भूभू अब भी कमल के फूल में बंद था। भूभू जोर जोर से रो रहा था। तभी एक नन्हे हाथी ने उसके रोने की आवाज सुनी।
1: अरे, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है?
0: हाथी ने ऊपर देखा।
1: यहाँ तो कोई भी नहीं है।
0: हाथी ने नीचे देखा।
1: अरे, यहाँ भी कोई नहीं है।
0: हाथी ने दाएं देखा, बाएं देखा।
1: ये किसके रोने की आवाज है? कोई दिखाई क्यों नहीं देता?
0: हाथी की नजर उस कमल के फूल पर पड़ी।
1: लगता है आवाज इसी फूल से आ रही है।
0: कमल के फूल के पास गया और ध्यान से सुनने लगा।
1: आवाज यहीं से आ रही है।
0: हाथी ने अपनी सूंड से उस फूल को हिलाया और फूल खुल गया। भूभू छत से बाहर आ गया।
2: मैं बाहर आ गया। अरे हाँ, मैं बाहर आ गया। मुझे किसने बाहर निकाला?
1: ओ, तो तुम थे फूल के अंदर।
2: हेलो नन्हे हाथी, थैंक यू तुमने मुझे बाहर निकाला, वरना मैं इसी फूल में बंद रह जाता।
1: कोई बात नहीं नन्हे दोस्त।
0: इसके बाद नन्हे हाथी और नन्हे भवरे में दोस्ती हो गई।

0: हाथी और भंवरे की दोस्ती। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं समाप्त होता है। तो श्रोताओं, अजीत को
1: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं।

0: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
1: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
0: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
1: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
0: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
2: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

धरती मेरी धरती प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की कड़ी महासागर वातावरण का आपसी तालमेल और जीवन। पिछली कड़ी में आपने सुना सूरज की ऊर्जा ने धरती पर जीवन संजोने में एक अहम भूमिका निभाई है, पर इस निरंतर चलते जीवन को धरती पर मौजूद महासागरों एवं वातावरण ने भी अपनी प्यार भरी थपकियां दी। तो आइए सुनते हैं महासागर वातावरण का आपसी तालमेल।

0: अरे हमारे तारे कहाँ गए? वसुधा
1: जी,
0: अरे ये मानव और सृष्टि उठे कि नहीं अभी तक, और विवेक स्टेशन पहुंचा कि नहीं?
1: देखती हूँ। मानव सृष्टि, मानव उठो, चलो उठो सृष्टि।
2: क्या मम्मी, संडे के दिन तो सोने दो।
3: हाँ मम्मा, पापा भी कितनी जोर से चिल्लाते हैं।
1: अरे चिल्लाएंगे नहीं बेवकूफो, सूरज आसमान पर चढ़ गया और तुम दोनों उठते ही नहीं हो। चलो उठो, ब्रश वगैरह करो, उठो अब।
3: अरे मम्मी, ये विवेक भैया कहाँ गए?
1: अरे तुम्हारे पापा के कॉलेज के दोनों के दोस्त डॉक्टर ब्रजमोहन और उनकी पत्नी डॉक्टर अल्पना और उनके एक और सहपाठी डॉक्टर शमसुल इस्लाम आ रहे हैं आज।
4: डॉक्टर शमसुल इस्लाम?
1: हाँ।
4: यानी कि इस्लाम अंकल? जो मुझे बहुत डांटे थे। लेकिन वो क्यों आ रहे हैं यहाँ पर?
1: मानव ऐसे नहीं बोलते बेटा, तब तुम बहुत छोटे थे और इस्लाम भाई साहब को बहुत तंग करते थे, अब तो तुम काफी शरीफ हो गए हो ना।
3: ये और शरीफ? अरे मम्मी, इस्लाम अंकल पहले तो सिर्फ डांटते थे, अब तो ये शरीफ मानव पिटने के लायक है।
4: पिटने के लायक है? पर मम्मी ये सब यहाँ पर आ क्यों रहे हैं?
0: मानव मानव और सृष्टि फटाफट तैयार हो जाओ। अरे भाई, ये तीनों हमारे देश के जाने माने समुद्र और मौसम विज्ञानी हैं। पता है, डॉक्टर इस्लाम तो 3 बार एंटार्क्टिका जा चुके हैं।
4: बहुत अच्छी बात है पापा, लेकिन ये हमारे घर क्यों आ रहे हैं?
1: चुप मानव, अगर दोबारा ऐसा बोला ना तो बहुत पिटाई होगी।
4: लेकिन
1: घर पर मेहमान आ रहे हैं तो खुश होना चाहिए ना बेटा, बार बार एक ही रट लगा रखी है, क्यों आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं। अब चुपचाप जाकर नहाओ, चलो।
3: वाह वाह मम्मी, मानव की सुबह का डांट से श्री गणेश।
0: अरे मानव बेटा, दिल्ली में डॉक्टर ब्रज, डॉक्टर अल्पना और डॉक्टर इस्लाम का समुद्र और वातावरण विषय पर लेक्चर है। अब सभागार यहाँ से पास है तो मैंने गेस्ट हाउस में रुकने को मना कर दिया। अब ये तीनों हमारे साथ करीब 1 हफ्ता रहेंगे।
4: इस्लाम अंकल भी 1 हफ्ता रहेंगे?
3: और क्या, और पूरे 1 हफ्ते तुझे डांट पड़ने वाली है।
4: तुम तो यही चाहते हो कि मुझे डांट पड़े।
0: अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। पिछली बार जब डॉक्टर इस्लाम आए थे तो एक तो तुम सिर्फ 4 साल के थे और बेचारा शमसुल भी अपने अंटार्कटिका मिशन को लेकर कुछ परेशान था।
3: अरे पापा, इस मानव ने इस्लाम अंकल के सारे कागज और चिट्ठियों पर भी तो रंगों से ड्राइंग बना डाली थी।
0: तभी तो डांटा था इस्लाम ने। बेचारा मानव डॉक्टर इस्लाम के शोध पत्रों पर ड्राइंग बनाकर उसे ही दिखाने चला गया था।
4: मुझे डांट पड़ी और आप सब हंस रहे हो।
1: अरे मानव क्यों दुखी होता है रे, तेरे इस्लाम अंकल तुम सबको इतना प्यार भी तो करते हैं ना।
0: एग्जैक्टली,
1: तेरे लिए डांट के बाद खिलौने भी तो लाए थे, याद है ना?
3: और वो भी इसने उनके सामने ही बराबर कर डाले थे।
0: वैसे मेरे ये तीनों दोस्त तुम बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। पता है, डॉक्टर इस्लाम तो खुद ही हमारे यहाँ रुकना चाह रहे थे और तुम्हारे बारे में तो वो पूछ भी रहे थे मानव।
4: बाप रे, अगर उन्हें मैं अभी तक याद हूँ तो मैं जल्दी से नहा धोकर अच्छी तरह से तैयार हो जाता हूँ।
1: जल्दी जाओ। चलो, इस्लाम भाई साहब के डर से संडे को सुबह सुबह नहाने तो गया मानव।
0: सही बात है, उनको यही रोक के रखना
1: पड़ेगा। बिल्कुल।
0: लो, अब लगता है आ गए। मानव मानव जरा दरवाजा तो खोलना।
1: अरे आप भी किसे आवाज लगा रहे हैं? मानव बेचारा तो इस्लाम भाई साहब के डर से पहले ही अपने कमरे में चुपचाप किताब खोलकर बैठ गया है।
0: अच्छा ठीक है, चलो मैं ही जाकर दरवाजा खोलता हूँ। अरे आओ ब्रज इस्लाम, कैसे हो तुम सब?
5: बिल्कुल ठीक।
1: नमस्कार नमस्कार।
0: हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक।
5: भाई बहुत वर्षों बाद मिलना हो रहा है। नमस्ते भाभी।
1: नमस्कार भाई साहब।
5: ये मेरी पत्नी और सहयोगी डॉक्टर अल्पना है।
1: नमस्ते भाभी जी।
4: नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी।
0: नमस्ते नमस्ते। और भाई इस्लाम, और बताओ कैसा चल रहा
6: है? हम तो ठीक है, आप सुनाओ कैसे?
0: सब खैर।
6: भैया तुम्हारा विवेक भैया तो बहुत समझदार
0: है
6: ना, 100 रुपए मांग रहा था, सीधे 40 करा दिए।
0: अबे मुझसे तो 40 के 100 ले लेता। वैसे भाई डॉक्टर इस्लाम, अब इसका नाम विवेक ऐसे ही थोड़े ही रखा है। विवेक पूर्ण है।
1: आइए ना आप लोग, नाश्ता तैयार है?
0: नाश्ता तैयार?
1: हाँ नाश्ता तैयार है।
0: लीजिए लीजिए, आप लोग लीजिए ना, सब लोग
7: खाइए भैया,
5: खाना
1: बहुत
0: स्वाद है ना।
1: अच्छा लगा भाई साहब।
6: हाँ तो भाई सृष्टि बेटे कैसी हो?
8: मैं ठीक हूँ अंकल।
6: हाँ ठीक हो? अरे आज सूर्य प्रकाश, तुम्हारा वो शैतान बेटा क्या नाम है उसका? हाँ मानव। अरे भाई वो मानव दिखाई नहीं दे रहा।
1: मानव कहाँ है? मानव मानव मानव, देखो इस्लाम अंकल बुला रहे हैं तुम्हें।
0: अब ना
8: अंकल। अंकल मानव आपकी 5 साल पहले की डांट अभी तक नहीं भूला।
6: बिल्कुल सही है। चलो तुम्हें मैं ही बुला लेता हूँ। मानव, अरे मानव कहाँ हो?
0: लो आ गया मानव।
8: नमस्ते अंकल।
6: नमस्ते नमस्ते।
8: नमस्ते आंटी।
1: नमस्ते बेटा।
6: भाई मानव बहुत बड़ा हो गया, अरे इधर आओ।
8: जी अंकल।
6: क्यों बच्चे कैसे हो?
8: मैं ठीक हूँ।
6: हाँ भाई तो कौन से क्लास में आ गए?
8: मैं 4th class में।
1: अरे वाह मानव तो वाकई बड़ा हो गया।
9: अंकल आपका लेक्चर समुद्र और वातावरण विषय पर है ना?
10: हाँ विवेक, मैं और अल्पना वातावरण पर बोलेंगे और डॉक्टर इस्लाम महासागरों और समुद्रों तथा वातावरण के आपसी तालमेल पर बताएंगे।
8: अंकल महासागर और वातावरण का आपस में क्या तालमेल है?
6: अरे वाह मानव, लगता है हमारा लेक्चर तो अभी से शुरू क्यों है?
1: बेटा पहले नाश्ता कर ले, फिर तुम्हारे सभी सवालों का जवाब देंगे। हाँ, ठीक है
0: जी।
10: और हाँ, जब तक हम हैं तब तक मानव को रोज कम से कम 4 सवाल जरूर पूछने होंगे। ठीक है मानव?
8: जी अंकल।
6: चलो जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, तब तक मानव तुम कुछ सवाल सोचते रहो। क्यों मानव?
8: जी।
0: थोड़ा शुगर पास करना यार।
1: सादा अचार मत खाओ बेटा।
8: हाँ अंकल, आप बता रहे थे कि महासागर, सागर, वातावरण और भूमि का आपसी तालमेल है।
6: हाँ बेटे सृष्टि, चलो मैं तुम्हें से पूछता हूँ कि धरती की 3 मुख्य प्रणालियाँ कौन सी हैं?
8: प्रणालियाँ क्या मतलब अंकल?
10: बेटे मानव, हमारा प्रणाली से मतलब है वो मुख्य तंत्र या सिस्टम जो इस धरती पर जीवन बनाने तथा बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है।
8: ब्रज अंकल, जीवन के लिए आवश्यक है हवा, पानी और खाना यानी भोजन, है ना? बिल्कुल ठीक कहा दीदी, इन तीनों के बिना, खास करके भोजन के बिना तो जीवन होगा ही नहीं।
1: सृष्टि बेटे, तुमने एक आम व्यक्ति के रूप में बिल्कुल ठीक कहा, पर अगर हम वैज्ञानिक रूप से धरती के बदलते मौसम, जलवायु, पेड़ पौधे, पर्यावरण, तापमान आदि का एक भौतिक इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं तो हम थोड़ा और बड़े और व्यापक स्तर पर जाते हैं।
9: आंटी मेरे हिसाब से धरती के 3 मुख्य तंत्र होंगे, भूमि, महासागर और वातावरण।
0: वेरी गुड, वेरी गुड।
6: बिल्कुल सही। देखो सृष्टि और मानव, जो तुमने कहा वो भी ठीक था, पर विवेक ने इसे एक बड़ी प्रणाली समझते हुए हवा को वातावरण, पानी को महासागर तथा आवास एवं खाने को भूमि का हिस्सा बना दिया।
1: विवेक तुमने बिल्कुल ठीक सोचा, हालांकि आवास एवं भोजन हमें पानी में भी उपलब्ध है, इसलिए भूमि की यहाँ एक नई भूमिका हो जाती है।
8: कैसी भूमिका आंटी?
10: समझाते हैं, पर मानव अपने सवाल भी सोचते रहना। अच्छा
8: जी।
6: देखो जैसा विवेक और डॉक्टर अल्पना ने बताया, भूमि, महासागर तथा समुद्र इसी धरती के 3 मुख्य तंत्र हैं, और इन्हीं तंत्रों का आपसी तालमेल हमें नए नए मौसम, खाद्य पदार्थ तथा जीवन देता है।
10: यानी हम पूरी धरती को अलग अलग तंत्रों की एक ऐसी अनूठी प्रणाली के रूप में देखते हैं, जहाँ सारे भौतिक पैमाने मिलकर हमारी इस धरती को अद्भुत एवं जीवन भरा ग्रह बनाते हैं।
1: यानी सभी तंत्रों की परस्पर क्रिया चलती रहती है, जिससे हवा, आंधी, बारिश, तूफान, चक्रवात आदि आते हैं।
8: वो कैसे आंटी?
6: तो मानव
8: जी,
6: पहले तुम 3 तंत्रों को अलग अलग रूप में समझ लो, फिर तुम्हें इनका आपसी संबंध आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मानव अपनी स्कूल की कोई पुस्तक या कॉपी ले आओ जरा।
8: वो क्यों अंकल?
6: अरे भाई तुमने मेरे सारे शोध पत्रों पर ड्राइंग बनाई थी, अब मैं तुम्हारी पुस्तक पर ड्राइंग बनाकर उनको जरा थोड़ा सा रंग दो। क्यों?
2: मम्मी।
1: अरे नहीं बेटा, क्या इस्लाम भाई साहब, आप भी ना बेचारा मानव इतनी मुश्किल से तो हिम्मत जोड़ पा रहा है और आप उसे तोड़ने में लगे हुए हैं।
6: ये बात है। अच्छा तो मानव चलो किताब रहने दो, चलो अब ध्यान से समझो, कुछ पल लेना पड़े तो बता जरूर देना।
4: जी।
7: हाँ भाई, पिछले कुछ दशकों में धरती की प्रणालियों की जटिलता का अध्ययन करते हुए वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वातावरण, महासागर, भूमि और यहाँ तक सभी जीव जंतु जिसमें मनुष्य भी शामिल हैं, सभी आपस में एक नाजुक तार से बंधे हुए हैं और किसी भी एक भाग की गतिविधि हर एक तंत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखती है।
4: हैं? नाजुक तार से बंधे हुए हैं? कौन सा तार? मैंने तो कोई तार नहीं देखा।
6: मानव, अरे भाई मानव, यही तो ऐसा तार है जो दिखाई नहीं देता पर महसूस सब करते हैं।
4: वो कैसे अंकल?
9: अब देख मानव, अब मैं पापा के स्कूटर पर रोज तुझे घुमाता हूँ, तुझे तो बड़ा मजा आता है ना?
4: हाँ भैया।
9: पर जो तुझे आजकल ज्यादा गर्मी लगती है उसमें कहीं ना कहीं इस स्कूटर की भी भूमिका है।
4: स्कूटर का गर्मी से क्या लेना?
7: लेना कैसे नहीं मानव, स्कूटर, कार, बस, फैक्ट्री आदि से निकलने वाले धुएं में ऐसी गैसें होती हैं जो गर्मी बढ़ाती हैं।
4: देखा मानव, विवेक भैया के साथ तेरा स्कूटर पर लगाया गया फालतू चक्कर कैसे पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है।
0: बिल्कुल ठीक कहा सृष्टि, तो मानव यही है वो अदृश्य धागा जिससे हम सब बंधे हैं और हमारी जरा सी गड़बड़ी पूरे जीवन की डोर को ही तोड़ सकती है। अब समझ में कुछ आया मानव?
4: थोड़ा थोड़ा पापा,
0: थोड़ा।
6: चलो तुम्हें विस्तार से समझाते हैं, पहले वातावरण से शुरू करते हैं। अब मानव, जैसे तुम सागर से बहुत दूर यहाँ दिल्ली में रहते हो तो तुम्हें लगता है कि सागर या महासागर की तुम्हारे जीवन में कोई भूमिका नहीं है, है ना?
7: हाँ, पर बच्चों ऐसा नहीं है, महासागरों और वातावरण का एक साथ एक एकल तंत्र के रूप में ही अध्ययन किया जाता है क्योंकि ये एक समान पारस्परिक क्रिया तथा अदला बदली से बहुत नजदीकी से जुड़े हुए हैं।
6: हाँ बच्चों, दोनों ही महासागर और वातावरण अपने में होने वाली गतिशीलता के लिए ऊर्जा सूर्य से ही ग्रहण करते हैं, समझे?
10: और ताप या गर्मी में भिन्नता के कारण ही सघनता या दाब में भिन्नता आती है और ये भिन्नता या फर्क ही हवा तथा महासागर प्रवाह का आधार होते हैं।
9: अंकल, ये महासागर सूरज से आने वाले ताप या ऊष्मा के भंडारण का भी तो काम करते हैं ना?
10: हाँ विवेक, और देखो असल में महासागर जमीन की तुलना में ज्यादा गहराई तक गर्म हो जाते हैं।
7: हाँ, और जब ठंडी हवा इस गर्म पानी के संपर्क में आती है तो ये अपनी गर्मी या ऊष्मा वातावरण में छोड़ देते हैं। जो हवा महासागरों की सतह पर बहती है वो लहरें पैदा करती है और इस दौरान ये हवा जल वाष्प के साथ साथ पानी के तापमान के गुण भी अपने में समा लेती है।
0: हाँ तो भाई मानव, कुछ समझ आया?
4: शायद
6: है? भाई ये क्या जवाब हुआ?
10: अरे भाई, लगता है मानव को सब धीरे धीरे समझाना पड़ेगा।
7: अच्छा तो मानव, जैसा मैंने पहले बताया था, शुरुआत वातावरण से करते हैं।
4: जी।
7: वातावरण असल में गैसों का आवरण होता है जो पूरी धरती को अपने में समेटे हुए है।
6: हाँ, जब सूरज से आने वाली किरणें हमारे धरती के वातावरण में प्रवेश करती हैं, तो कुछ तो बादल और धूल के कारण वापस ऊपर की ओर परिवर्तित कर दी जाती हैं और कुछ भू सतह की ओर बढ़ती हैं।
7: अच्छा, अब जो किरणें जमीन की सतह की ओर बढ़ रही हैं, वो जब सतह से टकराती हैं, तो कुछ विकिरण तो धरती सोख लेती है और कुछ विकिरण बर्फ, पानी तथा अन्य परावर्ती सतहों से टकराकर वापस अंतरिक्ष की ओर लौट जाती हैं।
4: अच्छा।
7: और धरती से टकराकर ये इंफ्रारेड विकिरण में बदल जाती है, यानी धरती भी ऊष्मा लौटाती है।
10: अब हमारे वातावरण में कुछ गैसें होती हैं जो अपने खास गुणों के कारण बाहर निकलने वाली लंबी तरंगों वाली इंफ्रारेड विकिरण को बचकर नहीं जाने देती और उनकी ऊर्जा को सोख लेती हैं। इस कारण ये वापस धरती से टकराती हैं और सतह के तापमान में बढ़ोतरी करती हैं।
6: ये घटना धरती के समूचे इतिहास में होती रही है और इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, समझे?
4: जी।
6: बगैर वातावरण और ग्रीन हाउस प्रभाव के यह धरती बर्फ से जम जाएगी और यहाँ जीवन संभव नहीं होगा, समझे?
4: समझ गया अंकल। हाँ। पर अब मुझे ना खेलने जाना चाहिए।
6: अरे अभी से? मानव अभी कहाँ चले, अभी तो मुझे तुमसे पुराना हिसाब किताब पूरा करना है।
4: पर वो...
10: और बेटे मानव, तुमने चार सवाल भी तो नहीं पूछे।
4: जी वो
8: बेचारा मानव फंस गया।
4: अंकल आपने सारी बातें इतनी अच्छी तरह से समझाई है कि कोई सवाल पूछने के लिए ही नहीं है।
6: क्या बात है? मानव भाई हमने समझाया कहाँ है, अभी तो समझाना है भाई।
0: वैसे मानव बेटा
4: जी,
0: जीवन में बहुत कम मौके आते हैं जब सवाल पूछने का अवसर मिलता है और उनके जवाब जानने का भी, इसलिए भाई मेरा मानना है कि ऐसे मौकों को खोना नहीं चाहिए।
3: बिल्कुल।
0: और इसलिए अभी बैठ जाओ, खेलना बाद में, ठीक है?
4: ठीक है पापा। अच्छा अंकल, समुद्र में गति को मापने की इकाई को नॉट क्यों कहते हैं?
10: अरे वाह मानव बेटे, तुम्हारे पास तो बड़े रोचक सवाल है।
4: जी
10: भाभी, मानव के इसी सवाल पर एक एक चाय हो जाए।
1: आप भाई साहब, आपने कहा और अभी लेकर आती हूँ।
0: पेट में नॉट पड़ रही है,
6: नॉट पड़ रही है।
7: हाँ तो मानव, तुम्हारे इस रोचक सवाल कि समुद्र में गति मापने की इकाई नॉट क्यों है का जवाब अब ध्यान से सुनो। भाई पुराने समय में नाविकों द्वारा गति नापने की विधि से ये नाम पड़ा है।
4: अच्छा।
10: असल में पुराने समय में नाविक एक रस्सी जिसके हर 14.4 मीटर पर एक गांठ बंधी होती थी, उस एक सिरे को लकड़ी के लट्ठे से बांधकर समुद्र में फेंक देते थे।
6: अब ये लकड़ी का लट्ठा अपने साथ रस्सी को खींचता है। अब हर 28 सेकंड में कितनी गांठें लट्ठे ने खींची हैं, इससे नाविक जहाज की गति का पता लगाते हैं। गांठ को अंग्रेजी में नॉट कहते हैं, इसलिए नाम पड़ गया।
7: आज एक नॉट मतलब 1.85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति होती है, समझे?
4: जी आंटी।
0: अरे मानव, तुम बेकार में अपने इस्लाम अंकल से डरते हो, देखो वो तुम्हें कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं।
4: हाँ पापा।
6: मानव ज्यादा खुश मत होना, सारी बातें खत्म करके मुझे तुम्हारी सब किताबों में अभी ड्राइंग भी बनानी है।
4: मम्मी
1: क्यों तंग करते भाई साहब बच्चे को, लीजिए चाय लीजिए भाभी जी।
0: हाँ थोड़ी ब्रश तुम भी लो ना।
6: जी क्या बात है।
9: एक सवाल था, वातावरण की गैसों से आने वाले

0: ऊर्जा और ऊर्जा छोड़ने के बीच में संतुलन बन पाता है, ठीक?
1: हाँ।
0: अंकल, पर वातावरण में कौन कौन सी गैसों का स्तर है?
1: हाँ तो विवेक, अब अगर शुष्क हवा में देखें तो मुख्यतः नाइट्रोजन लगभग 79% है।
0: अच्छा।
1: ऑक्सीजन 20%
0: और
1: आर्गन करीब 1% के आसपास है।
0: अच्छा।
1: जबकि वाष्प जो भिन्न भिन्न मात्रा में वातावरण में मौजूद है, एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, समझे?
2: और अन्य ग्रीन हाउस गैसें बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में वातावरण में मौजूद होती हैं, जिन्हें पार्ट्स पर बिलियन यानी PPB में मापते हैं।
3: अल्पना आंटी, पार्ट्स पर बिलियन का मतलब हुआ 1/1000। इतनी छोटी मात्रा में इन गैसों का क्या फायदा या नुकसान?
4: नहीं सृष्टि बेटे, ऐसा नहीं है।
3: हाँ?
4: एक सूक्ष्म गैस जिस पर आजकल बहुत ध्यान दिया जा रहा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
1: इस कार्बन डाइऑक्साइड का वर्तमान में स्तर 0.034% के लगभग है और इतनी सी मात्रा में ये अच्छी खासी गर्मी पैदा करने में सक्षम है, जानते हो?
5: मिसेस मल्होत्रा, आइए।
6: भाई साहब, ये हमारी पड़ोसन है मिसेस मल्होत्रा।
7: ओ जी, नमस्कार।
8: नमस्कार, नमस्कार। आइए आइए मिसेस मल्होत्रा, कैसे आना हुआ आपका?
7: ओ जी, वो अपना मानव आज हैप्पी के साथ खेलने नहीं आया, इसलिए देखने आई थी, कहीं तबीयत तो नहीं खराब है जी?
3: हाँ आंटी, मानव की तबीयत तो वाकई इस समय बहुत खराब है।
6: नहीं नहीं मिसेस मल्होत्रा, ऐसी कोई बात नहीं। असल में ये मानव के पापा के दोस्त डॉक्टर इस्लाम, ये हैं डॉक्टर ब्रजमोहन और आप उनकी पत्नी डॉक्टर अल्पना जी हैं। ये मानव को वातावरण और महासागरों के बारे में कुछ समझा रहे थे इसीलिए।
7: ओ जी, आप डॉक्टर हो तो बीमारी शिमारी की बातें करो ना जी, ये समुद्र से हमारा क्या लेना देना, और वातावरण तो पहले ही खराब है ना जी।
8: और नहीं नहीं परजाही जी, असल में ये बीमारी वाले डॉक्टर नहीं बल्कि समुद्र और वातावरण पर शोध करने वाले वैज्ञानिक हैं। खैर, आप बैठिए ना हमारे साथ, चाय पीजिए, आइए बैठिए।
7: जी भाई साहब, जरूर बैठूंगी, पर वसुधा जरा चाय में थोड़ी चीनी ज्यादा डालो।
8: मुझे लगा था चीनी कम डालनी।
6: दुनिया का कम पे जोर है, आप ज्यादा कहती है तो ज्यादा चीनी वाली चाय लाती हो।
3: हाँ तो अंकल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अलावा आजकल मीथेन गैस के बारे में भी बहुत बातें हो रही हैं, है ना?
1: हाँ सृष्टि बेटे, बिल्कुल ठीक कहा। मीथेन भी एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है और इसके बढ़ने का एक प्रमुख कारण बढ़ती मानव आबादी है।
7: ओ जी डॉक्टर साहब, बढ़ती मानव आबादी पर अपनी कॉलोनी में तो एक ही मानव है और वो है ये हमारा मानव पुत्र।
4: नहीं नहीं मिसेज मल्होत्रा जी, असल में इस्लाम का मतलब पूरी मानव सभ्यता से है।
7: ओ जी, ओ।
4: हाँ तो सृष्टि बेटी, हमारी मवेशियों की बढ़ती आबादी तथा मुख्यतः धान की खेती से मीथेन का स्तर तेजी से बढ़ रहा है।
2: पहले मीथेन का स्तर करीब 0.003% था, जो अब बढ़कर 0.018% हो गया है।
3: अच्छा।
2: ऐसे ही पहले कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 18वीं सदी की शुरुआत में 0.028% था, जो अब 0.034% के करीब है।
6: पीजिए भाभी जी चाय, चीनी पूरे 3 चम्मच।
7: थैंक यू वसुधा। ओ जी डॉक्टर साहब, अब इतनी सी मात्रा बढ़ने से क्या होता है जी? अब चाय में चीनी 3 चम्मच डालो या 3.5, क्या फर्क पड़ता है जी?
1: हाँ मल्होत्रा भाभी जी, ये जानने के लिए तो आपको भी हमारे साथ रोज बैठना पड़ेगा। अभी तो हम वातावरण की बात कर रहे हैं, फिर इन दोनों के बीच के परस्पर संबंध समझाएंगे, तभी तो आप 3 चम्मच और 3.5 चम्मच का फर्क जान पाएंगे।
7: ओ जी, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा जी, मुझे तो मल्होत्रा साहब का और हैप्पी के लिए खाना भी तो बनाना है जी।
4: अरे नहीं नहीं नहीं, सारी बातें आज नहीं, धीरे धीरे करेंगे। अभी तो आप ये भी जानेंगे कि कैसे जंगल कार्बन और नमी का भंडार होते हैं और कैसे समुद्री जीव कार्बन सोखते हैं।
2: अब महासागरों में वातावरण के कारण महासंचार होता है और इससे समुद्री पानी के गुणों में अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है।
1: अब जिस वातावरण की हम बात कर रहे हैं, ज्यादातर उसकी प्रकृति महासागरों पर निर्भर करती है और ज्यादातर उसकी ऊर्जा का स्रोत भी महासागर ही होता है।
4: बारिश, आंधी आदि सभी इन महासागरों और वातावरण के आपसी तालमेल का ही नतीजा है। चलो मानव, आज तुम हैप्पी के साथ खेलने जाओ, पर कल हैप्पी को भी जरूर लेकर आना। और हाँ, तुम्हें और हैप्पी को मिलकर 4 सवाल जरूर पूछने होंगे।
1: एक मानव
3: जी।
1: हाँ, चलो सूर्य प्रकाश, हम भी थोड़ा टहल आए, बैठे बैठे थक गए, और लौट कर मुझे मानव की किताबों पर ड्राइंग भी तो करनी है।
7: अरे मम्मी,
6: बेटा कर लेते थे ना अंकल को ड्राइंग एक दिन।
1: अच्छा मिस्टर दुलोता, आप भी आना कल।
7: हाँ जी,
1: खूब सारी बातें करेंगे।
7: हाँ जी सर, जरूर आऊंगी। वैसे मेरे हैप्पी को महासागरों के बारे में खूब पता है जी।
3: तो चलिए कल उससे भी मिल लेते हैं।
8: आओ इस्लाम ब्रिज, थोड़ा टहल आए। तुम भी चलो विवेक।
3: मम्मी, इस्लाम अंकल और ब्रज अंकल को कितनी जानकारी है ना?
6: बिल्कुल है बेटा, और तुम्हारी अल्पना आंटी को भी।
7: लेकिन मम्मी, वो इस्लाम अंकल मेरी किताबें गंदी कर देंगे।
3: भाई अब वो तो बाद में ही पता चलेगा, अभी तो तुम जाओ और खेलाओ।
7: अच्छा वसुधा, मैं चलती हूँ, कल अपने हैप्पी को लेकर आऊंगी। अच्छा सृष्टी।
3: अच्छा आंटी।
7: अच्छा अल्पना जी, बाय बाय
6: बाय बाय बाय बाय।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1,000 रूपए प्रतिमाह पोषण सहायता के रूप में और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निक्षय.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
1: निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे सुनीता, कैसी है मुनिया?
1: नमस्ते आशा दीदी, बस ठीक है।
0: साफ सफाई का ध्यान रख रही हो?
1: जी दीदी, जैसा आपने बोला था, हर रविवार साफ सफाई की जिम्मेदारी लेते हैं। जहाँ कहीं भी पानी इकट्ठा देखते हैं, तुरंत साफ करते हैं। जैसे पानी का ड्रम, कूलर, फ्रिज की ट्रे, सबकी साफ सफाई करते हैं।
2: और आसपास कहीं भी टायर, नारियल, खाली बर्तन या किसी भी चीज में पानी जमा होने नहीं देते। दीदी
0: बहुत बढ़िया।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.
9: Beautiful track only on Suru Sharda 90.8 FM. So Sharth Manzoor, singers Palak Muchal and Muhammad Irfan. Music and lyrics by Sanjeev Chaturvedi. Label Tips Official. So let's listen to it only on Suru Sharda 90.8 FM. So

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: हाय, मैं हूं रणवीर। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
4: गच लागे, म्यूजिक प्रोड्यूसर थिंकर लिरिसिस्ट अजमेर बलंबिया, म्यूजिक कंपोजर मासूम शर्मा, सिंगर मासूम शर्मा, सॉन्ग नेम इज गच लागे, ऑल योर सुनो शारदा 90.8 FM, सो लेट्स एंजॉय इट।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक। समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक। समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
1: शारदा। लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है, और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है आपको। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
3: नमस्ते आशा दीदी,
2: सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
3: जी दीदी, जैसे रहुआ कहल रहनी हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखे नी ओकेरा के तुरंत साफ करें, जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे
4: और आसपास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कोनो भी चीज में पानी जमा नहीं होके दे दीदी।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक बम।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे यानी कि 5 जूस। वो कौन कौन से 5 जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए 5 हेल्दी जूस जरूर पिएं। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हमारा भविष्य हाथों में है,
2: हम साथ मिलकर आगे बढ़ें।
1: हाथ होंगे साफ सुमन के पालन के साथ, एस मतलब सीधा, बहते हुए साफ पानी से हाथों को गीला करें और साबुन लगाएं, पानी से दूर अपनी हथेलियों को रखें,
2: यू मतलब उल्टा, हाथ के बाहर वाले हिस्से पर अच्छे से साबुन लगाएं,
1: एम मतलब मुट्ठी, अपनी उंगलियों और उनके बीच की त्वचा को रगड़ें,
2: ए मतलब अंगूठा, अंगूठों और उनके बीच की त्वचा को रगड़ें,
1: एन मतलब नाखून, अपनी हथेली और नाखूनों को रगड़ें,
2: के मतलब कलाई, हाथ के पीछे के हिस्से को रगड़ें,
1: और अंत में बहते हुए साफ पानी से हाथों को धोएं और हवा में हाथों को सुखाएं।
2: तू सुमन के पालन के साथ हाथ हो गए पूरे साफ,
1: एस मतलब सीधा,
2: यू मतलब उल्टा,
1: एम मतलब मुट्ठी,
2: ए मतलब अंगूठा,
1: एन मतलब नाखून,
2: के मतलब
1: कलाई।
2: हमारा भविष्य हाथों में है,
1: हम साथ मिलकर आगे बढ़ें।

0: Hi, this is Sharmili Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ. आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव. इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें? जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे. चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें. तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए. ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है. व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए. रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए. विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है. अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है. इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए. होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं. तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें. अब इसी में आगे हम बात करते हैं, बोटुलिज्म क्या है. तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है. बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है. ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है. बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं. कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है. बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है. इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है. कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें. पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए. अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है. प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है. तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना. जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह. भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है. फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है. इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है. प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है. ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं. इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे. ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM.
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर.

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Solo Sharda.
5: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
6: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
7: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
8: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
6: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा

0: स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
0: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
0: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Film making एक creative field है और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो, आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो, तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: The School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है, तो फिर कहीं देर ना हो जाए। कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: क्या हुआ?
6: हम रोज 29 की रात को सोते हैं और जब सुबह उठते हैं ना तो वापस 29 होती है।
5: हाँ? मतलब
6: हमारी 30 नहीं आ रही है तितली।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखें, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: 2018 में यहाँ पे JEE-AS के 22 केसेस मिले थे, जिसमें दो लोगों की डेथ भी हो गई थी।
2: हमारे गांव देहात के जो भी केस होते थे यहाँ पे, हमें हर केस को जो है जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ता था, लेकिन दस्तक अभियान के थ्रू जो है काफी हद तक जो है केस कम करने में सफलता मिली है। इसके लिए सबसे पहले जिले स्तर पे मीटिंग की गई, फिर उसके आधार पे हम लोगों ने जो है एक माइक्रो प्लान बनाया।
1: तो आप लोग अपने अपने माइक्रो प्लान यहाँ पे शेयर कर दीजिए ताकि इंटर डिपार्टमेंटल सबको मिल जाए। ठीक है, तो आंगनवाड़ी और आशा साथ में ही विजिट करेंगे डोर टू डोर।
3: डोर बाय डोर टू जाते हैं और हर घर हम ये सूचना देते हैं कि साफ सफाई के बाद आप हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को और अपने खुद फूल आस्तीन का कपड़ा पहने, बच्चों को मोजा और अपने मोजा पहने रहें, क्योंकि जो मच्छर लगते हैं उससे हमारे बच्चों को और हमको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और वही बीमारी का कारण हो सकता है।
4: उबालने के लिए बताते हैं और पानी करछिल से निकालें, उसमें हाथ न डालें, हाथ धोल करके पानी निकालें।
1: कोविड में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा हमारा कैंपेन। हमारा कोई भी हेल्थ वर्कर डोर टू डोर सर्वे कर रहा है तो वो ये देख रहा है कि किसी को फीवर है या क्या सिम्टम्स हैं, तो हम उसका टेस्ट करा सकते हैं। अगर कोविड रिलेटेड पेशेंट है तो उसे भी आइडेंटिफाई कर सके, JEE-AS रिलेटेड है तो उसे भी आइडेंटिफाई कर सके टाइम पर। अभी दस्तक अभियान के तहत जो है हमारी ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मी नाली की सफाई कर रहे हैं, झाड़ी काटने की एक्टिविटीज चल रही हैं, एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है।
2: ये बहुत ही अच्छी योजना रही माननीय मुख्यमंत्री जी का। इसके माध्यम से हम लोग JEE-AS केस कम करने में और उसकी मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी कम करने में बहुत ही उपयोगी साबित हुआ ये।
1: हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेट किया है, वो वहाँ पर अपने स्कूल्स में टीचर्स के माध्यम से बच्चों के पेरेंट्स को और बच्चों को दस्तक कैंपेन के बारे में जागरूक कर रहे हैं।
3: बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता सब लोग जागरूक हो रहे हैं।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है। फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है। इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
3: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग, तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निःशुल्क जाँच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
1: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: शिशु के 6 महीने के होने के बाद
1: माँ के दूध के साथ जरूरी है बच्चे के लिए पौष्टिक आहार।
0: केवल माँ का दूध
1: नहीं बना पाएगा बच्चे को मजबूत।
0: अतिरिक्त पोषण की जरूरत,
1: दूध के साथ ऊपरी आहार की अहमियत।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, किसे दिखाऊं, पता नहीं कितना पैसा खर्च हुई है।
1: अरे मैं तो कहूँ हूँ कि तुम इसे लेकर बाबा जी के पास जाओ, बच्चों को अक्सर नजर लग जाती है। अरे नजर झड़वाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।
2: अभी कहीं ले जाने में जाने की जरूरत नहीं है, जाके मेडिकल स्टोर से दवा ले लो या गांव के बंगाली डॉक्टर को दिखा लो, दोनों ही बहुत जानकार हैं। बड़े अस्पताल में बस बड़ा पैसा खर्च होता है और कुछ नहीं।
3: चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बच्चे को जिला में स्थित बीमार नवजात शिशुओं के लिए अलग से बने अस्पताल जिसको कि SNCU बोलते हैं, वहाँ लेके चल सकते हैं। वहाँ के डॉक्टर साहब और नर्स बहन जी बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल में विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं। शहर के बड़े अस्पतालों जैसी सब मशीनें इस अस्पताल में हैं। अगर बच्चे की कोई जांच करानी हो तो अस्पताल द्वारा खुद ही करा ली जाती है। नवजात को लेकर इधर उधर भागना नहीं पड़ता है और इन जांचों और दवाइयों पर परिवार को कोई भी खर्च भी नहीं करना पड़ता। इसके साथ बीमार शिशुओं को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर वापस छोड़ने के लिए सरकार ने निशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा दी हुई है। तो सोचिए कि सरकार ने अगर इतनी व्यवस्था की है तो हम क्यों अपने नन्हे मुन्ने की जान को जोखिम में डालें और क्यों फालतू पैसा खर्च करें।
0: मैंने सोच लिया है, अब अपने बच्चे को 102 एम्बुलेंस में ले जाकर SNCU में ही दिखाऊंगा।
3: तो आपको क्या समझ में आया, फर्क पड़ता है अगर आप अपने बीमार नन्हे मुन्ने को झाड़ फूंक, मेडिकल स्टोर, झोला छाप डॉक्टर या फिर महंगे प्राइवेट डॉक्टर की बजाय जिला अस्पताल में स्थित SNCU में दिखाते हैं, क्योंकि फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।